0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा।

0: तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसी हाउस ने पास की, तो मेहरबानी करके किसी के अगर खाम ख्याल में कुछ है तो वो निकाले। कोई कोर्ट के फैसला नहीं कर सकती, कोई जलसे में बैठ के तकरीर करके ये फैसला नहीं कर सकता, कोई टीवी में बैठ के सेमिनार करा के ये फैसला नहीं कर सकता। फैसला इस हाउस में होगा, डिबेट इस हाउस में होगी, फैसला ये हाउस करेगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा फैसला करेगा कि जो बाकी आवाजें चल रही है ना उनके सब मुंह बंद करेंगे हम इंशाल्लाह। क्या तालियां है कि ये सूबा हमेशा एक रहेगा सिंध, हमेशा एक रहेगा सिंध।
2: सिंध असेंबली जे आम इजलास में नवं सूबन इल्ज़ाम यूनिस बाबति रिथ ते बहस। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त अंग्रेज़ बि सिंध जो विरहाङो न करे सघिया। वॾनि वॾनि तो माण्हू हो चयो आहे नवनि सूबनि जो बहस छॾे छॾियो, पर सभिनी जो मुंहुं बंदि कराइण जो वाहिद हल असेंबली में बहस कराइण आहे। सिंध बाबति फ़ैसिलो को अदालत न कंदी, न ई पिंडी में थींदड़ सेमिनारनि या जलसनि जुलूसनि में फ़ैसिलो थींदो। जेसी ताईं असां मां हिकु बि एम पी ए ज़िंदा आहे, सिंध जो विरहाङो न थींदो। सिंध हिकु आहे, हिकु रहंदी। कंहिंजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरहाङो न थींदो। सिंध असेंबली जे इजलास में उहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरहाङो कॾहिं बि न थींदो। वॼायो ताड़ियूं, ही सिंध हमेशा रहंदी।
3: कोई सामने हो या पर्दे के पीछे हो, ये 50 सालों से खेल रहे पाकिस्तान की धरती के साथ कि बलूचिस्तान के हालात को देख रहा है कि कहां पहुंच गई। क्या तुम फिर चाहते हो कि सिंध भी इस हालात में आ जाए? और तोड़ोगे, कितना तोड़ोगे, क्या तोड़ के करोगे, क्या मिलेगा? कि है तो सिंध एक है, नहीं तो कुछ नहीं। कि तुम अपने अकीदों के नेजे हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते? तुम्हारे वजूद है, हम ये कैसे मान सकते हैं, कैसे तकलीफ कर सकते हैं कि हमारा बाजू अलग हो जाए, टांग अलग हो जाए, सिर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए? ऐसा कथन नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि सिंध की तकसीम की बात हो।
2: सिंध असेंबली में रिथ पेश करण जो मकसद सिंध जे अवाम खे सूरत हाल खां आगाह करण आहे। सिंध जी अवाम पंहिंजो रद अमल ॾेई छॾियो आहे। सोशल मीडिया हुन जो गवाह आहे, जिन खे हिन धरती पनाह ॾिनी, उहे मादरे वतन ऐं माउ जा टुकड़ा करण जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध जे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा कंदा। पीपुल्स पार्टी एम पी ए निसार खोड़ो जो सिंध असेंबली में ख़िताब। पी पी मेंबर राजा रज़ाक बलोच चयो त सिंध असांजो वजूद आहे, पंहिंजे वजूद जी विरासत कीअं था करे सघूं। सिंध हिकु तारीख़ तहज़ीब सुञाणप आहे, सिंध जी विरासत जो शोशो छॾींदड़नि खे यादि रखणु घुर्जे। जेसी ताईं हिकु बि हिलाली पुट मौजूदु आहे त सिंध विराइजी न सघंदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो त पंहिंजनि अकाउंट खे जो ख़ुशि करण लाइ सिंध जे विरहाङे जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि। फार्म 47 ते अचण वारनि खे इख़लाक़ी तौर अहिड़ी ॻाल्हि करण बि न घुर्जे। खुरम किरियो चयो, सुमरो चयो त ख़बर पइजी वेंदी त सिंध जो हिलाली पुट केरु आहे। असां गोलियूं खाइण लाइ तयार आहियूं, पर पंहिंजी माउ सिंध खे विराइण न ॾींदासीं। नजम आलम चयो त मोहसन नकवी केरु थींदो आहे सिंध जे विर्छ कराइण वारो? इस्लामाबाद खे पैगाम ॾियणो आहे त सिंध हिकु आहे, हिकु रहंदी दुनिया जे का बि ताक़त हुन खे विराए न थी सघे।
4: आज कहीं से कोई भी आवाज अगर सूबों की उठ रही है या इंतजामी यूनिट के हवाले से उठ रही है, एन आईन के मुताबिक है। कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, निसार बोरो साहब ने भी बताया, सर मुशर्रफ साहब ने उसको 5 डिस्ट्रिक्ट में 2000 में तब्दील किया। सर सिंध एक है, एक रहेगा, मैं मुराद अली शाह साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। सिंध को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इंतजामी यूनिट बनाने से सिंध मजबूत होगा।
3: मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब इस सिंध में शहर हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, तो इस सिंध में इंतजामी यूनिट क्यों नहीं हो सकते? इतनी फिक्र है सिंध की, इतनी फिक्र है, 22,000 अरब रुपए 18 साल में खा गए।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786
1: जी हा 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकानी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकर तवा के मैदे की तकलीफ, सीने की जलन, खट्टी उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण की जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे की खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-1287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: ऐं मेहड़ भरिसां चांडिया बिरादरीअ जे बिंदरनि में पुराणे तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल, टे ॼणा ज़ख़्मी, ॻोठ हासिल खोसो में चांडिया बिरादरीअ जे बिंदरनि में हलंदड़ पुराणे तकरार तां जहिड़ो थी पियो। फायरिंग में 35 वारनि जो सजाद वरद बख़्शल चांडियो क़तल, ॿी दुर्जा इम्तियाज़ चांडियो, वाहिद बख़्श ऐं ग़ुलाम मुस्तफ़ा चांडियो लठियूं लॻण सबबि ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबॉरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंग

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए FM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03132525786
2: जी हा, 2315525786
1: जीए FM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: गाना सखर गूंज रही।

तो आवाज भी सिर की है। GFM 88 नेटवर्क सिर की आवाज, पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: स्ट्रीमिंग जो है ना 30 सेकंड लेट होती है।
1: अच्छी गाड़ी
0: में जो मरता ऐसा नहीं ना, गा के सुनाए ना, सुर लगाओ गाना सुनाओ, इसीलिए तो है सेगमेंट कि हम गा के सुनाए। ओके, किसी को डेडिकेशन है
1: आपको आपकी टीम के डेडिकेट।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।

0: वेरी नाइस, किसी को डेडिकेट करना है?
1: डेडिकेट करना है?
0: हाँ जी करें। चले जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और ये रहा गाना।

नाइस जलाने वाला गाना, और जलाने वाले गाने के बाद हम प्ले करेंगे नेक्स्ट सॉन्ग जो कि मुझे सुना दिया था कॉलर ने, तो सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: GA Sakhar FM 88
1: सखर की आवाज।
0: अच्छा अभा अच्छा
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
0: Yeah!

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9 लगी 5 मिंटन।

0: ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: लाल जे गोठ हाजी जान मोहम्मद हिंगोरो में उस्तादन जे खोट खिलाफ़ गोठाणनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। गोठाणनि जो चवणु आहे त 150 शागिर्दनि लाइ सिर्फ़ हिकु उस्ताद आहे। उस्तादनि जी खोट सबबि शागिर्दनि जी तालीम मुतासिर थी रही आहे। उस्ताद मुक़ररु करे परेशानी ख़तम कई वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस: अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस: टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: ख़ुशख़बरी: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
9: ख़ुशख़बरी: ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे।
10: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
9: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोए जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
7: जी हा, 2315525786।
5: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके, आज का टंग ट्विस्टर है कि टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता और तोते की चोंच टूटी, ठीक है, ये कहेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आज का टंग ट्विस्टर कौन कह पाता है। टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी। 03000111348 और जिन लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं उन लोगों के मैसेजेस को भी साथ साथ इंटरटेन करते हैं। और हमें मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम, शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान रिंद से, शायर गाजी खान रिंद, और जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और इसके अलावा शहजाद अली रिंद, कौन है, जहरा

इसके अलावा शरीफ कानून जरा आपका शो सुन रही है, आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि खुशबू लगा रहे की आवाज में कोई गाना सुनाओ, आप ही सुनाते हैं जी, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा सब्र, ये सब कुछ करके हम आपको गाना सुनाएंगे। नाइस प्रोग्राम। नेक्स्ट मैसेज में मुझे सिर्फ इतना ही रिसीव हुआ है, थैंक यू सो मच। सफदर बलोच हमारे साथ मौजूद है, शेर लिखते हैं, लफ्जों के तीर से यूं ना मारा करो ए जालिम, कुछ तो रहम खाया करो, नाजुक दिल है शीशे का।

थैंक यू सो मच. और आज काफी दिन बाद आपका शेर मुकम्मल पहुंचा है मुझ तक. इसके अलावा जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, खुदा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. थैंक यू सो मच सफदर बलोच. और इसके अलावा गुड मॉर्निंग, हाई रुखसार, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, प्लीज प्ले सॉन्ग पिरी ओ पिरी. दिस इज अल्ताफ गरीब बलोच फ्रॉम कराची.

0: आपके जी नेक्स्ट कॉलर रिसीव करेंगे और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो
1: अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम कौन कहाँ से.
1: क्या हाल है दाजी.
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. कौन बात कर रहे हैं कहाँ से.
1: मैं रोड़ी से बात मीरानी.
0: रोड़ी से बात कर रहे हैं. रोड़ी से कौन.
1: मीरानी.
0: मीरानी बात कर रहे हैं. ओके प्रोग्राम सुनते हैं. कौन सा प्रोग्राम है.
1: मस्ती वाला चिल.
0: नहीं मस्ती वाला चिल नहीं है. सॉरी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. 0000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. ठीक है तो कॉल कीजिए. नेक्स्ट कॉलर. हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं.
2: मैं पुराना
0: ओके. अच्छा मुझे बताएं प्रोग्राम सुनते हैं.
2: जी दादी आपको खुद मालूम होगा कि हम आपके लिस्नर हैं. पुराने लिस्नर हैं. न्यू लिस्नर नहीं है.
0: पुराने लिस्नर हैं. न्यू लिस्नर नहीं है. ठीक है प्रोग्राम सुनते हैं.
2: बाकी टाइम मिलता है तो सुनते हैं लेकिन मसरूफ आपकी बहुत कुछ होती है ना. आज जो है मसरूफ नहीं था. टाइम मिला तो आप तक सुन रहा था. अच्छा
0: मतलब आज सुन रहे हैं ना.
2: जी जी हाँ.
0: तो टंग ट्विस्टर सुना है. बोलेंगे.
2: जी दादी आपको तो मालूम है हम इस बात में वीक हैं कमजोर हैं और आप बड़े मुश्किल कंप्यूटर आते हैं. इस वजह से हम तो लेकिन ऐसा तो प्रोग्राम में हासिल करते हैं.
0: चले ठीक है. थैंक यू सो मच. फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखें. 0300001348

0: एक और कॉलर चेक करेंगे. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मोहम्मद हनीफ बोल रहे हैं.
0: मोहम्मद हनीफ प्रोग्राम सुन रहे हैं? टंग क्रशर बोलेंगे?
1: जी जी प्रोग्राम सुन रहा हूँ.
0: तो टंग क्रशर बोलेंगे?
1: बताओ.
0: आपने कहना है टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी.
1: क्या बोला था?
0: टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी.
1: अच्छा.
0: हाँ चले फिर, अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अच्छा वही लोग कॉल करें जो टंग ट्विस्टर बोले या बोलेंगे, बोलना चाहते हो. ठीक है, नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन किधर से?
2: मोहम्मद इस्माइल फुलशहर से.
0: कहाँ से?
2: फुलशहर है.
3: और
0: नहीं, हम होल्ड नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच. 03000113488 के ऊपर एक और कॉलर. हेलो.
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? गाजी खान रिंग भाई. टंग ट्विस्टर बोलेंगे?
4: मेरे समझ में नहीं आया, आपने बताया नहीं.
0: समझ में नहीं आया, मैं बताऊं?
4: बताओ, समझ में आ गया.
0: टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी.
4: क्या? टूटी चोंच?
0: टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी.
4: नहीं, समझ में नहीं आएगा भाई.
0: ओके, और कुछ कहेंगे?
4: बस आप वाला कुछ रखे. पहले बताया था ना इससे, तो 12 बजे से पहले.
0: 12 बजे से पहले बता देती फिर आ जाता.
4: हाँ, आज नहीं आपने बताई.
0: ओके ठीक है, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़.

0: It's 12:30 PM. This sound check is brought to you by
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे।
9: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
8: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
6: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
6: जी हाँ, 3135525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स जो कि मुझे रिसीव हो चुके हैं जी, और कमेंट्स हमें कर दिए हैं नजीर खोसो ने बहुत सारे, और लिखते हैं कि दुनिया में कोई काम ना अच्छा है और ना बुरा है, बल्कि इंसान की नीयत अच्छी होती है या बुरी होती है। बंदा अगर बद हो जाए तो काम बद हो जाते हैं, और बंदा अगर नेक हो तो वही काम नेक बन जाते हैं। वाओ,
1: रास आ गया नंगे पैर फिर दी नुजोग रास आ गया।
0: नजीर खोसो, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा
1: सजना दा दिल तोड़ गया
0: 0300 11 34 88 के ऊपर आप लोगों की कॉल

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3।

0: ओके वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार और लास्ट लिंक में वापस आ चुके हैं जी. लास्ट लकी कॉलर 03000113488 के ऊपर लास्ट इन लकी कॉलर. हेलो हेलो वालेकुम सलाम. ओके जी कॉल ड्रॉप हो गई है. 03000113488 एक और ट्राई. हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: से बात कर रहा हूँ लारकाना से.
0: ओके प्रोग्राम सुनते हैं
1: जी. अभी फोन किया है.
0: ओके लास्ट कॉलर है आप, तो हमें आज की अच्छी बात बता दें.
1: आज की अच्छी बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह जो हम का हमारा वक्त गुजरता है वो अच्छा बहुत गुजरता है. हमारे भाई की आज शादी है. हाँ हम इंशाल्लाह रात ही जाएंगे शादी हाल में.
0: आपको बहुत बहुत मुबारक हो. बिल्कुल आपको अच्छा सा गाना हम सुनाते हैं.
1: सलामत रखे.
0: थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज जी. और साथ साथ हम मैसेजेस को भी इंक्लूड करते हैं जी. मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं जी. महबूब अली हमें सुन रहे हैं मोरो सिटी से. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारी सिस्टर. वेलकम सिस्टर, आपके प्रोग्राम का हम इंतजार करते हैं. और कहते हैं कि जी आपके प्रोग्राम की क्या बात है, हमारी फरमाइश भी अच्छी है. प्ले करती हो, जीती रहो. थैंक यू सो मच. और मैंने बहुत अच्छी कोशिश की आपका मैसेज रीड करने की. और कहते हैं कि जी बहुत सारी दुआएं आपके साथ. इसके अलावा आकाश कुमार, विशाल कुमार, बिहारी लाल, संदीप संदीप कुमार, कृष्ण कुमार और मुमताज मुलाई का गाना सुनना चाहते हैं जी. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ फाइनली मेरे जाने का वक्त हो चुका है, तो हम लेंगे आपसे इजाजत. इंशाल्लाह मेरी आपसे अब चिट चैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजी. सुनो मत भूलिएगा जिंदगी गुलजार है. और इसी के साथ साथ लास्ट में हम प्ले करेंगे अच्छा सा सॉन्ग.
2: कैसे चलेंगे सिलसिले, तुमसे ही करता शुरू.
0: सो दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन्स आउट. टेक केयर, गुड बाय, बामान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: फसल की सरमस्त धरती,
1: साथ ही मेहरान सिंध की एक और पहचान।
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: मुल्क जे राजधानी इस्लामाबाद ऐं पिंडी में बरसाति तबाही मचाए छॾी। घरनि जूं छितियूं किरण जे नतीजे में ॿ ॼणा फोत। रोड रस्ता तलाउ जो नेकु ॾियण लॻा। गाॾियूं मुकमल तौर ते ॿुॾी वयूं। E11 नालो भरजण सबब पाणी आबादी में दाख़िल। केतिरा ई घर ॿुॾी विया। नालाली में पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं। बाद फोज तलब। गवाल मंडी ऐं कटियारिया में बि सूरतहाल ख़तरनाक बणियल। पिंडी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि ते गाॾियुनि बदिरां ॿेड़ियूं हलण लॻियूं। बरसाती पाणी सबब रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया।
1: सिंध काबीना ई आफ़ीस ऐं ई काबीना खे इदारे जी शिकिल ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ई गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन फीस बि 1000 रुपया मुक़रर। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबे जे कची वारे ज़मीन जी सर्वे कराए नक्शा ठाहिण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सूबाई मालियाती अवार्ड कमीशन जी तयारीअ लाइ अशरफ वासीअ खे कंसल्टेंट मुक़रर करण जो मंज़ूरी ॾिनी वई। PCC यूनिट जो बि नालो तब्दील करे सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड रखियो वियो। पास्को खां 2,23,000 मेट्रिक टन कणक ख़रीद करण जी मंज़ूरी ते 3,00,000।
0: वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जूं बक्षिप में चीन समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे परडे वज़ीरनि सां मुलाक़ातूं। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत किथे जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। इसहाक़ डार चीन, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान ऐं परडे वज़ीरनि सां मुलाक़ात कई। परडे आफ़ीस मौजूद मुलाक़ातनि दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते बि ॻाल्हियूं कयूं वयूं।
1: मेयड़ भरिसां चांडिया बिरादरीअ जे ॿिनि धिरनि में पुराणे तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल, 3 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ हासिल खोसो में चांडिया बिरादरीअ जे ॿिनि धिरनि में हलंदड़ पुराणे तकरार तां जहिड़ो थी पियो। फायरिंग जे नतीजे में 35 वरनि जो सजाद वलद बख्शल चांडियो क़तल थी पियो। ॿिए दर्जा इम्तियाज़ चांडियो, वाहिद बख्श ऐं गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो लठियूं लॻण सबबि सख़्त ज़ख़्मी थी पिया।
0: दादू में अवामी फोरम जे ज़रिए पाणी जे कोर्ट ख़िलाफ़ धरणो हारे नाबादगारनि ऐं शहरनि शाहजहान पार्क खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी धरणो हयो। अॻवाननि चयो आहे त दरियाहनि में पाणी जी सूरतहाल बहितर हुजण बावजूद शाखनि में पाणी जी खोट आहे। फसल सुकी रहिया आहिनि, आबादगार परेशान आहिनि, पाणी फराम कयो वञे।
1: डेरो लाल वेझो स्कूल में उस्तादनि ऐं सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज। ॻोठ हाजी जान मोहम्मद हिंगोर जे स्कूल में सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। निंदो वेझो बि उस्ताद जे बदिलीअ ख़िलाफ़ ॻोठ सिधी ख़ासि किले जो प्राइमरी स्कूल बंदि थी वियो। ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि उस्ताद जे बदिलीअ ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। ॻोठाणनि जो चवण आहे त ॻोठ जे स्कूल में मुक़ररु उस्ताद बदिली थियण ऐं बाद में स्कूल 6 महीननि खां बंदि आहे, जंहिंजो नोटिस वठी उस्ताद मुक़रर कयो वञे।
0: मोरे में उस्ताद जे घर ते हमले ऐं फायरिंग ख़िलाफ़ सियासी समाजी धुरियुनि जो एहतजाज। सिंध कॉलोनीअ में उस्ताद पीरल सियाल जे घर ते हमले ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरन जो चवण आहे त पुलिस अहलकारनि घर ते फायरिंग करे नौजवान अली रज़ा सियाल खे ज़ख़्मी कयो आहे। नोटिस वठी इंसाफ़ फराम कयो वञे।
1: जोई ऐं नवाब शाह में आबगाह जा वाकिया। नौजवान ऐं पेशमाम ज़िंदगीअ जो अंतांदो। जोईअ जे ॻोठ बचल खान रिंद में नौजवान अदनान रिंद पाण मथां पिस्टल जो फायर कयो। वारसनि जो चवण आहे त नौजवान घरू मसलनि तां कावड़ जी घर जे कमरे अंदरि पाण मथां पिस्टल जो फायर कयो। नवाब शाह में मस्जिद जे मौलवीअ घर अंदरि फाउ खाई आबगाह कयो। बंगवार कॉलोनीअ जे मस्जिद जे पेशमा में
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाख़ाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-879-0312-024-01-287. शिफाय मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफा पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
11: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
12: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
9: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
12: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
12: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
12: 03132525786।
9: जी हा 2311-25-25-786
12: GFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो.

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought.
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की आवाज
3: अपना शहर अपना घर मातली
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
5: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
6: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
8: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347321230
10: खुशख़बरी खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
11: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
10: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
10: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
11: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
8: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 0331252578
5: जी हा 2315525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाणी खिते जी लाइफ लाइन आहे। पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिब अमल थियणु घुर्जे। मका दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिं जे ख़िलाफ़ न आहे। इस्लामाबाद मफ़ामत यादाश ते खिते में अमुन जे बहाली लाइ आम आहे। शिंगाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जी सरबराही इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त दहशतगर्दी बि खिते खे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे। दहशतगर्दनि खे अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल करण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। पाकिस्तान इलाइक़े में जटादार अमन जे क़याम लाइ परज़म आहे। ॾखिण एशिया मुकमल अमन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिल नथो करे सघे। पाकिस्तान आलमी कानून मूजिब तकरारनि जो हल चाहे थो।

0: मुल्क जे राजधानी इस्लामाबाद ऐं पिंडी में बरसाति तबाही मचाए छॾी। घरनि जूं छितियूं करण जे नतीजे में ॿ ॼणा फौत। रोड रस्ता तलाउ जो लेख ॾियण लॻा। गाॾियूं मुकमल तौर ते ॿुॾी वयूं। इलेवन नालो भरजण सबब पाणी आबादी में दाख़िल। केतिरा ई घर ॿुॾी विया। नालाली में पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं बाद फौज तलब। गवाल मंडी ऐं कटियारिया में बि सूरतहाल ख़तरनाक बणियल। पिंडीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि ते गाॾियुनि बदिरां ॿेड़ियूं हलण लॻियूं। बरसाती पाणी सबब रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया।
1: सिंध काबीना ई आफ़ीस ऐं ई काबीना खे इदारे जी शिकिल ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ई गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन फीस बि 1000 रुपया मुक़ररु। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबे जे कचे वारे ज़मीन जी सर्वे कराए नक्शा ठाहिण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सूबाई मालियाती वार्ड कमीशन जी बि तयारीअ लाइ अछरवासीअ खे कंसल्ट मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। पीपी यूनिट जो बि नालो तब्दील करे सिंध पब्लिक पार्टनरशिप लिमिटेड रखियो वियो। पास्को खां 2,23,000 मैट्रिक टन ख़रीद करण जी मंज़ूरी। 3,00,000 टन कणक पास्को ज़रिए दरामद बि कई वेंदी।
0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो शगाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे इजलास दौरान मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि सां मुलाक़ात हो। वज़ीर-ए-आज़म चीन, रूस, तुर्किया, ईरान, बेलारूस, अज़बेक ऐं ताजिक सदर सां मुलाक़ातूं कयूं। मुलाक़ातनि दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत किथे जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं।
1: नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जो बैठक में चीन समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ातूं, ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। इसहाक़ डार चीन, ईरान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ात कई। परॾेही आफ़ीस मौज मुलाक़ात दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं।
0: अमेरिका इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत ते अमल करे त ईरान बि कंदो। अमेरिका वाइदनि जी भञकड़ी कई, जंहिं ते ईरान जवाब ॾिनो। शिगनाई सहकारी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे ईरानी सदर मसूद पश्चान चयो आहे त पाक, सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआदो मुस्लिम मुल्कनि में इतिहाद ॾांहुं क़दम आहे। मुल्क मुतहद थियनि त इसराइल हमिलो करे न सघंदो। अमेरिका बि इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत ॾांहुं वापसि आयो त ईरान बि तकिड़ो मुस्बत जवाब।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125-25786।
2: जी हा, 2315-25786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

चिंचू हलाइन केर पिया सफा नंढा नंढड़ा बार नंढड़ा बार जी मस फीडर हथ में हुजे उन्हनि खे चिंची ॾेई छॾनि था घर वारा वठो पुट हलायो पोइ रोड ते जेको थिए हुन सां केरु ज़िमेदार आहे भला सो ॿारनि खे त एटलीस्ट तव्हां चिंचू न ॾियो बाबा इहो जेको तव्हां ज़ुल्म कयो था पाण सां पंहिंजे ॿारनि सां ऐं ॿियनि माण्हुनि सां बि इन जो थोरो ख़्यालु कयो जेके बि असांखे उहे माण्हू ॿुधनि पिया जेके चिंची ड्राइवर आहिनि तव्हां ख़्यालु कयो बाबा पंहिंजो पंहिंजे ॿार ज़ाहिरा अगरि इहे हादसा थियनि था त तव्हांजे ॿारनि जो बि त नुक़सान थिए पियो न सो नंढा नंढा ॿार जेके चिंचू हलाइनि पिया न इन्हनि खे त एटलीस्ट तव्हां थोरो कंट्रोल में रखो बाक़ी त इहे मूंखे न लॻंदो आहे त सुधरी सघे थो समाज बाक़ी असांजे चवण न चवण सां कुझु बि न थींदो बाक़ी इहो आहे त वाक़ई इंसान पाण ख़्यालु करे पाण ख़्यालु कयो ऐं थोरो ॿियनि जो बि ख़्यालु कयो सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे सो इहे बहुत ज्यादा भाषण हो गया मुझे लॻता है कभी कभी मैं कुछ ऐसी बातें बोल देती हूँ प्रोग्राम में मेरे ऊपर सूट नहीं करती लेकिन हाँ ये तमाम चीजें जो है ना वो इरिटेट कर रही है आजकल मुझे और ये हमने गाना लगाया जो कि शायद बबर की आवाज में गाना है और इस गाने की फरमाइश मुझे पता नहीं किसने कर दी थी दो शायद लोग थे जो शायद बबर का गाना सुनना चाहते थे ये गाना उन दोनों को डेडिकेट

0: ॾाढो भलो गानो जेको तव्हां ॿुधो पिया अच्छा मक़सूद केॾे वॾो खूनी गानो हलायो अथई शमन मिराली जो बिल्कुल बिल्कुल ही बि खूनी गानो तव्हां ॿुधो अच्छा फ़हीम केॾे दादा रिक्शा वाले बि कम नहीं है कुझु टाइम पहले में फुल स्पीड आ रहा था अचानक रिक्शे वाला आ गया मेरी बाइक स्लिप हो गई और अगर ब्रेक नहीं लगाता तो यही बात है ना बिल्कुल बिल्कुल
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
1: सुनते रहो GFM 90.4

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

वापस आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। चलती का नमस्ते, आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं और तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत हो समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। बहुत ही आसान सा सवाल आप लोगों से पूछा गया आज के प्रोग्राम में, तो मुझे जवाब आप बताते जा रहे हैं। लेकिन मैसेजेस काफी सारे हैं, तो मैं जरा सोच रही थी कि आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ते आएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ हैं, हाय सिद्धरा जी, हेलो टू यू। अच्छा, अल्ताफ अली गादी बलोच, आप हमें कराची से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपने टॉपिक के ऊपर इतने सारे मैसेज कर दिए बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा बस सब्र करिए, आपको बताएंगे जवाब क्या है। और मोहम्मद जमान हमारे साथ है, वेलकम स्वीट बुआ जी, और गुड है हमेशा की तरह टॉपिक, आई थिंक ओके ओके, सिर्फ मखलूक ही तक नहीं चीजों आए। और कहते मेरा एसएमएस रीड नहीं हुआ, नाराज आई छा ना बाबा छो, नाराज छो ता छा कयो ता करो चिंची के लाइन। अच्छा, और हमारे साथी गोठ है मोमन तैयब थे, वो कहा भी बोला थे वो तमाम जो शो वेरी नाइस आई, थैंक यू वेरी मच। और महिलाबाद से गुलाम शबीर अबड़ो हैं और कहते हैं जमीन और आसमां के बीच पता नहीं क्या लिखा है आपने, मुझे समझ नहीं आई बात, तो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ आपको वेलकम कहा जाता है। और बिल्कुल जी चाचा, मैंने देख ली आप सब लोगों के मैसेजेस पर मेरी नजर होती है, कोई भी मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकता। और कश्मीर से हमारे साथी जुबेदा बलोच, हमारी भाभी, हाय सिद्धरा नाइस यो आंसर आपने दिया है, बिल्कुल दुरुस्त, क्या बात है भाभी जान। और ये हमारे साथ हैं जी, गुड आफ्टरनून सुंदरी जी, आंसर है जमीन और आसमां के दरमियान फासला है, इतना थोड़ा फासला कैसे हो सकता है बताएं मुझे जरा। अल्ताफ अली गादी जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं जी, अच्छा ये इतने सारे मैसेजेस आप अल्ताफ अली गादी आपने कर दिए, बहुत शुक्रिया जी, टॉपिक के ऊपर आपने इतने सारे मैसेजेस भेज दिए।

और हमारे साथ मायरा हमारा शो सुन रही है। मायरा कहती है अस्सलाम वालेकुम, आपने भी मायरा टॉपिक का जवाब दिया है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, क्या बात है जी। और जाग जानी चाचू हमारे साथ ही कहते प्लीज प्ले मास्टर मंजूर, मास्टर मंजूर हली रहे आए तो एंजॉय कयो। और हमारे साथ ही कश्मीर से अखलाक भाई हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मैं बस हो गई मेरी बस हो गई। अच्छा उनका अलावा मोहम्मद जमान भाई कहते हैं बुआ अच्छा इतना लंबा लेक्चर इसलिए था क्योंकि आपको स्कूटी चलानी थी। हाँ मैं सीख तो रही हूँ लेकिन ये है कि मेरे अंदर एक फूबिया बैठ गया है डर, वो जब खत्म होगा तो फिर कुछ सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे। और बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद जमान कहते बुआ जी एक तो पैसे खर्च हो रहे हैं, दूसरा आप हमारे SMS रीड नहीं कर रही है, हम मासूम के साथ ऐसा क्यों कर रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस आज ऐसा है कि आपके मैसेजेस पढ़ने में थोड़ी सी मुझे लेट हो गई है, सो डोंट बी सैड। और यहाँ पर हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम रोशनियों का सिटी कराची को, और हम हाँ कहती और हम चिंचियों का सिटी लाड़काना को कहते हैं। बेशक कुछ टाइम पहले इस पे स्टोरी रखी थी, बड़ा हंसी थी। और हमारे यहाँ तो एक चिंची है वो भी क्या बात है क्या बात है, ये सही है फिक्रिया तो ना के बर्दाश्त करो इतनी सारी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने उन्हें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया पसंद आई बात मुझे। और कहती ओए प्यारी ये क्या तुम

Sari Sari, Walaikum Assalam, Walaikum Assalam, Happy Tuesday afternoon, my sweet based RJ Sidra sister. Kaisi ho, dear sweetie, main theek hoon, tum batao kaisi ho, hamari pyari Fazli. और फहीम बिल्कुल आपका ये जो मैसेज ना कुछ टाइम पहले वाला मैसेज ठीक है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है तो इसका आप जो है ना वो थोड़ा सा टेंशन ना लें क्योंकि उनका इलाज अभी होगा थोड़ा आप सब्र करें मतलब जेको ना प्रोसेस में आए इन चीजों और हमारे साथ हैं अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची मुझे अभी सॉन्ग सुनाओ ओ पिरी जरूर प्ले करना ओके इतना टाइम के बाद आपको गाना याद आया जब इतने सारे मैसेजेस करे स्टार्ट में तब नहीं बोला तो शायद लगा भी देते अभी तो जिन लोगों ने पहले फरमाइश करी थी ना तो उनके गाने से ऐड कर दिए थे मैंने लिस्ट में और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ वैसे आप 5 बजे वाले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कीजिएगा आपको लाजमी गाना सुनाऊंगा

아, 사나 가입했나요? 아이리. अच्छा सायमा कहती हैं शो मस्त है, टॉपिक तबीयत नासाज है इसीलिए नहीं आ रही थी। चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और क्या हुआ है वैसे बताएं। और चाचा खालिद कहते हैं हाँ बिल्कुल वो पता है और बाकी इनकम का मुझे नहीं पता, मैं नन्ना मुन्ना ही देश का सिपाही यू नो ना। मकसूद मल्हा कहते हैं मास्टर मजू जो गानों हलायो बबा तां बुधो हूंदो हाणे। हमारे साथ ही ये अस्सलाम वालेकुम अदा छाला तांजो ठीक आया इलाही बख्श बुग्यो हमारे साथ है। कहते हैं बाजी माशाल्लाह तवांजा प्रोग्राम भला हुंदा आहेन पसंद आहेन असांखे सदा सलामत रहो। थैंक यू सो मच प्यारा सोना भा तांजो मोहब्बतूं आहेन।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना जो कि हम इंजॉय कर रहे थे और फरमाइश थी इस गाने की भी खैर। और यहाँ पर आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, जरा उसका जवाब बताएं, वरना अल्ताफ अली गादी जी और ज्यादा मैसेज भेजेंगे। 20-30 तो मैसेज खाली आपने हमें भेजी अल्ताफ अली गादी जी। और अच्छा, तो टॉपिक का जवाब जो है वो होने वाला है। अच्छा, मैंने सवाल पूछा है कि आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है, तो आसमान और जमीन के दरमियान जो है ना वो और आता है। और जब आप आसमान लिखें और लिखें और जमीन लिखें तो और आएगा ना, इतना आसान सा सवाल था। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने, भाई बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया और बाकी थोड़े थोड़े लोग थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा गलत जवाब दिया। और ये फहीम कहते हैं दादा, मतलब हाँ ऐसा, ये बचत के बारे में तो मैं खैर से थोड़ी ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, बाकी ये है कि स्कूटी का शौक जो ना मुझे 2018 से लेकर है, 2018 से लेकर मतलब मैं क्रेजी हूँ। तो वो है कि फिर ये था कि बस नहीं ले सकी थी, यही रीजन था कि भाई यहाँ पर कोई चलाता नहीं है, इतना माहौल नहीं है, ये नई चीज है, वो नई चीज है, तो उस वजह से मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है रहने देते। लेकिन अभी तो ट्रेंड आ चुका है बहुत ज्यादा, तो फिर मैं सोच रही थी कि ओके जी रिपोर्ट। भाई मेरा थोड़ा सीन अलग है, मैं मतलब मेरी जो आदत है ना वो थोड़ी थोड़ी ऐसी है, बाइक चलाऊं और बस ऐसी लड़कों वाली। तो ये है और ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रेक है और इस गाने के साथ आप लोगों से लेते ही जी इजाजत। सायमा अपना ख्याल रखें, ठीक है, बहुत ज्यादा वाला अपना ख्याल रखिए। और जी मिलते हैं आप लोगों से 5 बजे वाले प्रोग्राम में, सो अपना सारे लोग ढेर सारा ख्याल रखिए इनशाला। वरी तहां से मुलाकात मुझी 5 बजे वाले प्रोग्राम में थी पई, सो मोकलानी नाही बाबू सिंह सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वाटर इज द लाइफ ब्लड ऑफ आर रीजन। इट सस्टेन्स मिलियंस ऑफ लाइव्स, नरिशेस आर लैंड्स एंड सिक्योर्स द वेरी फ्यूचर ऑफ आर कमिंग जनरेशंस। It must never be weaponized. It cannot be used as an instrument of coercion, nor can it ever be exploited for political leverage. The treaties governing our shared waters are solemn binding international commitments. They are not matters of political conveniences to be cast aside at your will. They must be honored unconditionally in both लेटर एंड स्पिट।
2: पाणी हिते जे माण्हुनि लाइ लाइफ लाइन आहे। पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। पाणी खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौर इस्तेमाल कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। सभिनी सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरप्राइज़ इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिब अमल थियण घुर्जे। मके दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिं जे ख़िलाफ़ न आहे। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त बि खिते में अमुन जी बहाली लाइ अहम आहे। दहशतगर्दी बि खिते खे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे। पाकिस्तान इलाइक़े में जटादार अमुन जे क़याम लाइ पुरज़म आहे। ॾखण एशिया मुकमल अमुन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिल नथो करे सघे।

मुल्क जे राजधानी इस्लामाबाद ऐं पिंडी में बरसात तबाही मचाए छॾी। घरनि जूं छितियूं किरण जे नतीजे में मिजणा फोत थी विया। रोड रस्ता तलाउ जो लेख ॾियण लॻा। गाॾियूं मुकमल तौर ते ॿुॾी वयूं। E11 नालो भरजण सबब पाणी आबादी में दाख़िल। केतिरा ई घर ॿुॾी विया। नालाली में पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं बाद फ़ौज तलब। गवाल मंडी ऐं कटियारिया में बि सूरतहाल ख़तरनाक बणियल। पिंडीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि ते गाॾियुनि बदिरां ॿेड़ियूं हलण लॻियूं। बरसाती पाणी सबब रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया। सिंध काबीना ई आफिस ऐं ई काबीना खे इदारनि जी शकल ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ई गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपया मुक़रर। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबे जे कचे वारे ज़मीन जी सर्वे कराए नक्शा ठाहिण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सूबाई मालियाती अवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वास्ते खे कंसल्टर मुक़रर करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। PP यूनिट जो नालो बि तब्दील करे सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड रखियो वियो। पास्को खां 2,23,000 मेट्रिक टन कणक ख़रीद करण जी मंज़ूरी। 3,00,000 टन कणक पास्को ज़रिए दरामद बि कई वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो शंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे इजलास दौरान मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि सां मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म चीन, रूस, तुर्किया, ईरान, बिलारूस, अज़बेक ऐं ताजिकिस सदर सां मुलाक़ातूं कयूं। मुलाक़ातनि दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। नायब वज़ीर आज़म सकदार जो बक्शेक में चीन समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ातूं। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। सकदार चीन, ईरान, अज़बकिस्तान ऐं बेलारूस जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ात कई। परॾेही आफ़ीस मूजिबि मुलाक़ातनि दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। अमेरिका इस्लामाबाद मुफ़ाहमत ते अमल करे त ईरान बि कंदो। अमेरिका वाइदनि जी भञकड़ी कई, जंहिं ते ईरान जवाब ॾिनो। शंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त पाक तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो मुस्लिम मुल्कनि में इतिहाद ॾांहुं क़दम आहे। मुस्लिम मुल्क मुतहद थियनि त इसराइल हमिलो करे न सघंदो। अमेरिका बि इस्लामाबाद मुफ़ाहमत ॾांहुं वापसि आयो त ईरान बि तकिड़ो मुस्बत जवाब ॾींदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
9: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
5: اسانجے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
9: 0331252578 6
5: جی ہاں 2315525786
9: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: केश किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जू पक्यू छितू लगरा लाए खुश खबरी। छा चाहियो था अवां जे घरन जू छितू पक्यू हुजन त केश किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-32-41-230।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03132525786।
2: जी हा, 231-25-25-786।
9: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।
10: हट हट

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ कर रहा है लेकिन मेरे सियासतदान अलाउ नहीं कर रहे इस चीजों को। ये तफरीक जो है हम लोगों ने करी दी है, तो आए इसको बेहतर सिस्टम बनाने के लिए। आप लोग को हमें सिखाना है ना, कहीं कुछ आपने हमसे सीखना है, कुछ आपने हमें सिखाना है। इसमें ये नफरत अंगेज बयानात, इससे गुरेज करना चाहिए। अभी जैसे फारूक भाई ने खुद फाउल करा कि थरपारकर को सूबा होना चाहिए, थरपारकर को सूबा बनना चाहिए। भाई मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, ना थरपारकर को होना चाहिए ना कराची को सूबा होना चाहिए। मैं तो इस बात से मुत्तफिक हूं, एक गवर्नेंस का बेहतर निजाम होना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से हो, कोई और फॉर्मूला हो, उस पर तो मिल बैठेंगे तो बात होगी ना। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं एज अ MPA अपनी बात नहीं कर सकता। अभी सीनियर है जमील साहब के पास मैं गया तो मैंने अपनी एक अर्ज रखी है, एक शराब खाने पे मैं आज तक शर्मिंदा हूं। मैं मस्जिद के इमाम को वहां को शक्ल नहीं दिखा पा रहा। आप नहीं सुन रहे ना मेरी बात। अगर CM साहब मेरी बजट पे बात सुन लेते उस दिन, तो मैं आज यहां खड़े हुए दोबारा बोलता। तो आप आवाम की क्या सुनते होंगे, मैं तो इस पर बात कर रहा। जब एक MPA की नहीं सुन रहे, आप बोलते हैं हम सब एक हैं। फिर मेरे अल्लाह ने मुझे बताया, दीन ने सिखाया कि अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, कोई फजीलत हासिल नहीं। तो यार आपको कैसे फजीलत हासिल हो गई मुझ पर या हम पर या आपको आवाम पर? आप कैसे ऊपर हो गए और हम नीचे हो गए? इन चीजों से अब निकलें, बेहतरी की बात करें। मेरी तो जहां जरूरत पड़ेगी मैं फ्री काम करूंगा, बगैर किसी लाइमलाइट के काम करूंगा आपके लिए, लेकिन अगर अच्छाई होगी सूबे में। सवाल यहां छोड़कर जाऊंगा कि अगर सिंध के लोगों का कुछ बेहतर होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की शक्ल में हो या कोई और मॉडल हो, अगर उनकी जिंदगी बेहतर होती है तो कर देना चाहिए इस असेंबली को। ये एक एक हिस्ट्री में काउंट होगा कि सब ने अपनी सीटों की ताकत को छोड़कर अवाम की ताकत के लिए काम करा। कुर्सी से मोहब्बत इतनी ना करें कि किरदार में हम लोग गिर जाएं।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
1: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03132525786।
4: जी हा 2315-2575-786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जेकर तवाखे मैदे जी तकलीफ, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसाला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध, हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: ये तरीके कार थोड़ी है सर, इस तरह से तुम्हें नहीं चल सकता मामला। आप कैसे इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, कैसे आपके साथ मिलकर साथ चलें?
1: बहुत शुक्रिया।
0: क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते।
1: बहुत शुक्रिया।
0: बात भी नहीं, सर मुझे दो मिनट और दीजिएगा, मेरी तकरीर के दौरान डिस्टर्बेंस हुई है,
1: इसकी
0: वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। सर मैं ये समझता हूं, अगर मैं ये कह दूं कि जी फूड डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन सालों की गंदम खा जाता है और लोग भूखे मर रहे हैं, और ये कौन से चूहे हैं जिनको इनके लिए कोई और डिपार्टमेंट बना दें जो इन चूहों को पकड़े जो हर साल गंदम खा जाते हैं, इसको भी हदफ कर दें। सर अगर मैं वो चेयरमैन एंटी करप्शन की बात कर रहा हूं तो मैं नहीं कह रहा, वो चेयरमैन एंटी करप्शन का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। सर मैं बैठता हूं पीएसी की मीटिंग्स में, सर मुझे पता है कैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में इमरजेंसी वर्क के नाम पे टेंडरिंग हो जाती है। पूरी दुनिया को पता है कि एमसी में 40% कमीशन के नाम पे कैसे बगैर टेंडर के ठेके दिए जा रहे हैं। सर अगर हम आपकी करप्शन परफॉर्मेंस पे, हाई गवर्नेंस पे बात करें वो भी बुरा लगता है, सिंध की वहदत पे तो कोई बात नहीं हो रही, ये तो आपकी परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, इसके लिए तो मैग्नानिमिटी रखे हैं। हम अपोजिशन है, आप लोग भी रहे हैं अपोजिशन में, आपकी करप्शन पे बात कर रहे हैं, हमारा राइट है। हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को मेच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद आपके सामने है, जैसे एजुकेशन का बजट बढ़ रहा है आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन सूबे सिंध में है सर, 25%। 5,500 गांवों का वादा था आपका वर्ल्ड बैंक से जिसमें आप लोग खत्म करेंगे, चल रहे यहाँ पे नहीं हुआ सर। पूरा हमारे पास आपके खिलाफ चार्जशीट व्हाइट पेपर मौजूद है जिसमें जाति कुछ नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ना सिंध की मदद पे कोई बात है, सिर्फ आपकी गवर्नेंस और आपकी परफॉर्मेंस पे बात है, वो भी आपको बर्दाश्त।
1: ठीक है ताज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ए शिफाफ पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।
5: अवाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहे है। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल,
5: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रो है।
4: उनका अलावा असा रिफल की सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे।
5: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
4: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ए बिन तकरीबात लाए हाणे असा सा राबतो करियो। असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पण मौजूद आहे। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
10: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अस्सलामु अलैकुम। सोहारी सिंध जे मलूक मिटीअ ते रहंदड़ तमाम मौजिज़ ॿुधंदड़नि खे लाखीणे लतीफ़ जी ॿोली, मेहराण जी छोली ऐं मिठड़ी अमड़ जे लोली जहिड़ा सुहिणा सलाम। ऐं GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जे सॼी टीम जा कुर्ब क़बूल पवन। मौजिज़ सामईन, अव्हां जा कहिड़ा हाल आहिनि? अव्हां ख़ुशबाश आहियो? अव्हां ठीक ठाक आहियो? अव्हां चाक चङा भला आहियो? अव्हां मतारा जोड़ आहियो? ऐं अव्हां हशाश बशाश आहियो? असांजी दुआ आहे त सदाई तारनि में चंडु हुजो, खीर में खंडु हुजो, मेवनि में अंबु हुजो, ऐं कॾहिं बि अव्हां जी मुर्क मेरी न थिए। सदाई अव्हां जे लुड़कनि जो ॾुकार ऐं मुर्कनि जो सुकार हुजे। शाल अव्हां खे कोसो वार न लॻे, शाल अव्हां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो, जुग जुग जीओ, मुर्कंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिड़ंदा रहो। मौजूद सामाइन, ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM मातली, GAFM मीरपुर खास, GAFM मटियारी, GAFM सकरंड, GAFM मोरो, GAFM मेहरापुर, GAFM सखर ऐं GAFM लाड़काणे जो गॾियल आवाज़। GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम टावर्स जे एंटीनाउनि जे आधार ऐं उन सां गॾोगॾु इंटरनेट जे आधार जिन जिन सुरीलनि समातुनि ताईं ही आवाज़ जी उॾार पहुचे पई, उन्हनि सभिनी जे लाइ हाज़ुर आहे शो सिंधड़ीअ जी शाम। सिंधड़ी जी शाम अव्हां जे नाम कंदे यकीनन अव्हां जी खिदमत में हाज़िर आऊं अव्हां जो पंहिंजो यूनिस बकारी। ख़बरचार ॿुधायो, अव्हां जो वक़्तु कीअं थो गुज़रे? अव्हां जो कहिड़ो हाल अहिवाल? अव्हां वटि मौसम कीअं ऐं कहिड़ी ख़बरचार? मूंखे पूरी पक आहे त तव्हांजो वक़्तु सुठो गुज़रंदो हूंदो ऐं अव्हां जे सुठे वक़्तु गुज़रण जे लाइ असां हमेशह दुआगू हूंदासीं। तव्हांजो हर पल ख़ुशियुनि मां गुज़रे, ख़ुशियुनि वारो गुज़रे, ख़ुशियुनि में हुजो ऐं बाग़ बहारनि में हुजो ऐं अव्हां जी वर्क मेरी न थिए। बसि जिते बि हुजो हशाश वेठा। जनाब, असांजे तमाम स्टूडियोस जे स्टूडियो इंजीनियर्स ऐं टेक्निकल अमले जे सहकार जे करे, उते जे मैनेजमेंट जे करे असांजो आवाज़ सॼी सिंध में गूंजी रहियो आहे ऐं सॼी सिंध जे बहारुनि वारे आवाज़ में। जॾहिं बहारूं हूंदियूं, साज़ हूंदा, आवाज़ हूंदा, प्यार हूंदो, पंहिंजाइप हूंदी, त पोइ हूंदी अव्हां जी का। सिंधड़ीअ सुहिणे शाइर नियाज़ पिताफ़ी चयो त किन जे मुंहं में मिसरी, किन जो वात गुलाब, से माण्हू लाजवाब, लुत्फ़ जिन जे लफ़्ज़नि में। सो जनाब, अव्हां जे मोहबतुनि, अव्हां जे प्यार ऐं पंहिंजा पंहिंजे रंगनि खे शुरू करण खां पहिरियों, जेको पहिरियों रंग असां शुरू कयूं पिया, उन पहिरीं रंग खे शुरू करण ताईं कुझु मैसेजेस अची चुका आहिनि। जी हा, असांखे कुर्बान अली खासकेली साहिब ज्वाइन कयो आहे झंडे मरी खां, ऐं अव्हां जूं तमामु घणी महिरबानी मोहबतूं। ऐं दानिश बकारी सफ़र दौरान असांखे ज्वाइन कयो आहे, अव्हां जूं मोहबतूं महिरबानियूं। ऐं खोड़ सारियूं अव्हां जूं मोहबतूं। अॼु असां अव्हां जूं कॉल्स वठंदासीं, मैसेज ऐं तरीक़ेकार इहो ई हूंदो, तव्हां टाइप करे MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो, 88 ते मैसेज मोकिलियो। तकिड़ो तकिड़ो अलाए छा चयो, तव्हां इहो सोचींदा हूंदो। हा, टाइप करियो MTI, हुन खां पोइ स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखो,
8881 یعنی ٹے دفعہ 8 ایں 1 تے سینٹ کرے چھڈیو ہانے ہانے میسج اجا تاں جا پہنچندا میسجن جی برسات جیسی تے تاں تائیں پہنچے تیس تائیں آواز ہی دنیا جا گلاب ایں انہن جی خوشبو اواں تائیں پہنچایو تھا جے تونیک جو کو آواز تاں لا پلے کر رہے ہیں یو آواز کو نو ٹریک ریکارڈ کرن لا کے نئے سٹوڈیوز میں نہیں دو چھو تو وہ آواز اسا کا وچھڑی چکو ہے پر جیس تائیں سندھ جا سر سلامت رہندا یو آواز سندھ میں گونجت رہندو وہ ہے اللہ نے خاص کے لیے جو آواز اچھت کچھی بتاؤں

चेतारे चवंदियोस गालियों के सजणे, चेतारे चवंदियोस गालियों के सजणे, जे मोह मुकाबिल थ्यास ता वयूं सब विसरी। भला रे भेट धणीअ जे हिन खूबसूरत शहर सां अव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार, छो त अव्हां ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम जेका आहे अव्हां जे नाम ऐं अव्हां जो आरजी अव्हां जो पंहिंजो यूनुस बकारी अव्हां सां मुख़ातिबु आहे। अव्हां ॿुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे, GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे एप सां गॾोगॾु जेके पूरी दुनिया में असांखे ज्वाइन कनि था, उहे एप ते असांखे ज्वाइन करे सघंदा। यानी अव्हां सर्च कंदव गूगल ते GFM 88 रेडियो नेटवर्क, असांजी सभई स्टेशन तव्हांजे साम्हूं हूंदियूं, तव्हां पूरी दुनिया जे कहिड़े बि कुंड में ॿुधी सघो था। ऐं जेकॾहिं तव्हां असांखे पाकिस्तान जे अंदरि ॿुधो था तॾहिं बि एप ते ॿुधी सघो था। असांजी ऑफिशियल जेका आहे उहा एप आहे, उन ते ॿुधी सघंदव। ऐं गॾोगॾु जेके रेडियो सेट ते असांखे महिरबानी ज्वाइन करे चुका आहिनि, उन जे लाइ सिंध जे 8 वॾनि शहरनि जूं रेडियो स्टेशन तव्हां साण लाइव आहे। उन्हनि 8 स्टेशननि ते यकीन हिकु वक़्तु सिंधड़ी जी शाम शो हले पियो। ऐं मूंखे चवंदा आहिनि आरजी यूनुस बकारी, अव्हां खे छा चवंदा आहिनि, उन जे लाइ तव्हां हिकिड़ो मैसेज कंदव, टाइप कंदव MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखण खां पोइ पंहिंजो नालो ऐं 88 81 888 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। अव्हांखे नंबर बि ॿुधाए छॾींदासीं, तव्हांजूं कॉल्स बि वठंदासीं। सो उहो नंबर तव्हांखे मां कुझु मैसेज रीड करे वठां, पोइ कॉल नंबर ॿुधाए छॾींदुसि, जंहिं ते तव्हां सां हाल अहिवाल बि थींदा, दिलियूं ॻाल्हियूं बि थींदियूं। सो जनाब असांखे मैसेज ॻोठ हाजी सहते खां पहुतो आहे। जी जनाब असांखे यादि कयो आहे हाजी सहते साहब, महिरबानी, मिठो माण्हू भलीकार, शहबाज़ ख़ासकेली मिठो माण्हू ॿुधे पियो, साले सोलंगी, ताज मोहम्मद सहतो, आसिफ़ सहतो ऐं असद सहतो ॿुधनि पिया। अव्हां जा वॾा वॾा अव्हां जूं मोहबतूं, अव्हां जूं भलायूं ऐं भाल साला साल यादि रहंदियूं, जो अव्हां असांखे यादि कयो, अॼोके शो जो हिसो बणिया। असीं अव्हांखे चऊं था भलीकार कुर्ब तव्हांजा, थैंक यू वेरी मच, भलीकार भलीकार भलीकार। एंड जनाब ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु आहे हाणे, सो उन जे लाइ लिखो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 ते स्पेस ॾियण खां पोइ जॾहिं तव्हां 88 81 ते मोकिलींदव त असां वटि ज़रूरु पहुचंदो। पोइ मोकिले छॾियो असांजे मैसेज, छो त असीं वञे मैसेज जो सेड़ो कंदासीं ऐं कॉल नंबर तव्हांखे ॿुधाए था वठूं, ताकी तव्हांजूं कॉल्स बि अची वञनि। सो जनाब कॉल नंबर जे लाइ असांजो नंबर आहे 0334 3525786। वरी सोचींदा हूंदो त अञा बि सवली सिंधी में ॿुधायां, त पोइ 2 3 4 3 5 2 5 7 8 6 सफ़ा सवली सिंधी में अञा ॿुधायां थो, 2 3 4 5 7 8 6 इन ते कजो काल।

0: जी जनाब गोठ सवाली डंगणू खां असें ज्वाइन किया है डंदे शहर के वेझो अमीर बख्श जाहिद अली डंगणू साहब मिठा मानू अवाज तमाम घणी मेहरबानी गोठ हाजी हाजी हुजूर बख्श रिंद का असा के बुधन पिया शादी खान रिंद अवाज शामिल है दीन मोहम्मद रिंद अयाज रिंद अवाज तमाम घणी मेहरबानी नंढड़ो हसनैन रिंद अवाजा गजी बुधे पे तमाम घड़ी मेहरबानी भलीकार थैंक यू अवा फरमाइश लिखी है फौजिया जी जरूर कोशिश कबी जरूर साई जरूर आई गोठ अच्छा जी अली छलगरी साहब जो मैसेज पहुतो है अली छलगरी वाली मेहरबानी सैयद अली सईद अली लिखण तां चाहियो है पर सईद की जगह सैयद लिखी जी सो बहरहाल सईद अली छलगरी साहब तां जो मेहरबानी मोहब्बतूं आबाद हो जो शाद हो जो तारन में चंड खीर में खंड में वन तपे दोस्तों जी अस आवाज अवा तक पहुंचे पे तो जल्दी जल्दी जल्दी से शामिल थी वनो ताकि खबर पे तो केर अस शामिल थिए तो केर अस गड हों उन अस बिना देर के अने मैसेज शामिल क्यों पे हाजी गुलाम खास केली झंडे मरी का असा के कुर्बान अली खास केली साहब ज्वाइन कर कुर्बान तुम तमाम घड़ी मेहरबानी वा वड़ अवजा अवसा गड हों अज भी शामिल आयो थैंक यू अवा के चौंदी भलीकार तमाम घड़ी मोहब्बतों आई जनाब असा के साले पट खां ज्वाइन कयो आहे इरफान अली थेबो साहब इरफान अली थेबो साहब तव्हांजो मोहब्बतूं तव्हां असांखे खबड़ी भिट खां ॿुधो पिया मोहब्बतूं तव्हांजूं भलीकार चवंदासीं ऐं हा दोस्तो जेकॾहिं अवां कॉल करे शामिल थियण चाहियो था त जे असां कॉल थोरो जल्दी वठंदासीं छो त असांखे सेगमेंट्स अॻियां हली शुरू करणा आहिनि त कॉल में जे असां अवां सां कंदासीं हाल अहिवाल सो कॉल आहे 2044525786 0334-3525-786 उन ते असांखे मैसेज मोकिले छॾियो ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केर हूंदो अॼु की शो में शामिल त पोइ दोस्तो महिरबानी कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो तव्हां कॉल बि करियो ऐं SMS कयो ॾिसूं था SMS केरु कंदो ऐं कॉल केरु कंदो कॉल जो बि नंबर असां तव्हांखे ॾेई छॾियो आहे SMS जो नंबर ॾेई छॾियो आहे हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे फ़िलहालु हिकिड़ी कॉल अची चुकी आहे शामिल करियूं था ॾिसूं था त असां सां गॾु केरु जुड़ी चुको आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब ऐं किथां खां
1: जी बाबा कंदो
0: हा पंहिंजो नालो ॿुधायो
1: मोहम्मद साले बाबा
0: मोहम्मद साले भा कहिड़े ॻोठ शहर खां टंडो मोहम्मद खान शहर वेझो कहिड़े ॻोठ खां ॿुधो पिया अच्छा अच्छा ॿियो तव्हां सां केरु ॿुधे पियो
1: मुंहिंजा घर वारा आहिनि भाउ आहे चाचो आहे मुंहिंजो मोहम्मद
0: हा
1: यार मोहम्मद मोहम्मद हनीफ मामा यूसुफ
0: हा
1: जी कल असां प्रोग्राम ॿुधो पियो तव्हांजो पर ॻाल्हि इहा आहे त नंबर तव्हां जल्दी पई ॿुधायो ॻाल्हि कोन पए असांखे नंबर माना आयो न पए सम्झ में
0: हा अॼु सवलो सम्झ में अची वियो नंबर
1: ॿुधायो
0: हा शुक्र थियो शुक्र बसि तव्हांजे करे ई त असां आस्ते आस्ते ॿुधायो मिठा भा हा महिरबानी तव्हांजी लख थोरा मिठा भाउ लख थोरा ओके जनाब ॾिसंदासीं त कॉल ते असां सां गॾु ॿियो केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम हलो आवाज़ कटिजी वियो आहे इन करे ॾिसूं था कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां जी छा हाल है कुर्बान तव्हां ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो आवाज़ घटि पियो अचे तव्हांजो थोरो हा हाणे आवाज़ सही पियो अचे ठीकु आहे कहिड़ी ख़बर चाह रहा
2: मुंहिंजो प्रोग्राम तव्हांजो भलो हले पियो ॿुधूं पिया शाम जे पहर में जेकी तव्हां फरमाइश हलाई हलंदो ख़ासि केली जी बिल्कुलु
0: आमीन आमीन कुर्बान भले आऊं फरमाइश तव्हां खां कयां त तव्हां असांखे थोरो गाए ॿुधायो त कहिड़ो कलाम ॿुधाईंदा पर थोरो ॿुधाईंदे छो त मूंखे ब्रेक वठिणो
2: आहे
0: हा ॿुधाए जल्दी ॿुधायो
2: मुझे महबूब के सेता तुके शाब तुझे जाना उदा का
0: साईं महिरबानी लख सर मौजूद ख़ातिन हज़रात इन ते शॉर्ट ब्रेक जो टाइम थी चुको है आई असा के शॉर्ट ब्रेक वठणो है अस अजी खोड़ गालू कंदासी दिलचस्प गालू कंदासी पर तवा हाने कॉल फिलहाल न कजो बटे मिंटन जो ब्रेक हुंदो सफा शॉर्ट ब्रेक है के न वंजो छो त एकडे बिन मिंटन जी ब्रेक का पर जरे मा तां वापस इंदस दिल जो गालू तां सा करणे न केडी गालू करणे छो त शाम जो पहर नाव अवां जे ए अवां जो पारा असन जे ले छा आहे गीत बुधाइंदो शायरी बुधाइंदो गालियूं कंदो टहक बुधाइंदो जेको कुछ बुधाइंदो अजो नासी गद गद त पो असा गद रहजो GFM 88 रेडियो नेटवर्क मानी खिदमत में वासा गद
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
5: छातवान जोड़न जे सूर पुठन जी तकलीफ कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंदे वडे सूर खां परेशान आयो छा इलाज कराए कराए थकजी पिया आयो हाने इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस एक आजमायल कोरस जेको जोड़न पुठन कुल्हन ए जिस्म जे हर किस्म जे सूर में आराम लाए तैयार कयो वयो आए खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंध हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताई हमजा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाए फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287 खात्मा दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी जिंदगी
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230
8: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
9: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842
10: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
11: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
10: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
10: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद
11: अवां जे इत्माद खे कायम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
12: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: जी जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद हम अबुधाबी जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के एक ही वक्त अवान जी एफ एम सखर जी एफ एम मीरपुर खास जी एफ एम लाड़कानू जी एफ एम मोरो जी एफ एम मेहरापुर जी एफ एम सकरंड जी एफ एम मटियारी जी एफ एम मातली के बुध पाया शो आए सिंधड़ी की शाम आई अवान जो आर जो पैंजो यूनस बकारी अवान सा मुखातिब है मैसेज करने तरीको लिखो MTI स्पेस दियो पेंजे गोठ शहर जो नालो लिखी पेंजे नालो लिखो 888-188-81 ते मैसेज डारे मोकलियो मैसेज शामिल करे वठूं पो तानी कॉल वठंदासी पहरियों जो हाने ब्रेक का पे मैसेज पहुतो वो मैसेज पहुतो आहे यूनस भाई आपका नेटवर्क पे बहुत अच्छा शो चल रहा है सलाम कबूल हो 78 मोरी का यो मैसेज राजा HC किशोर कुमार कयो अवन महरबानी आई अवन शामिल है हीरा लाल एंड पवन कुमार अवन महरबानी आई हाजन उनड़ बुधे पियो आई रजाक पठान बुधे पियो अवन लिखो है रजाक पठान बठे वाला ओके जी वेलकम कहते हैं फौजिया सुनना चाहते हो वेलकम वेलकम भलीकार आई गोठ मोहम्मद तैयब थेबो का असा के बुधे पे हबीबुल्ला थेबो लेकिन तो शो तवां जो वेरी नाइस है सदको वन मिठा भलीकार मेहरबानी आई असा के बुधे पे ताज मोहम्मद साहब ताज मोहम्मद बुधे पे ओके जी ताज मोहम्मद साहब धीरा लाल चौहान असा ज्वाइन किया तमाम घड़ी मेहरबानी साहिल चौहान बुधे पे अवज मोहब्बतों वा वा खुश हो आबाद अड़ी रीत दोस्तों मेहरबानी कदरदानो भेनरों ए भाइरों मैसेजन से गड़ो गुज कॉल्स भी शामिल कंदी ए इंट्रस्टिंग गुफ्तगु कंदी तो दिसंदासी तो हाँ कॉल ते केर है पहले नंबर नोट करो 0334-352-5786 नंबर 2334-5786 यो नंबर है दिसंदा तो गड केर है पहली कॉल अची चुकी है दिसंदा केर गड शामिल थी हलो अस्सलाम वालेकुम जी आवाज अच्छी पे भाई जान जी रुस्तम पवार छाला खुश आयो ठीक कयो
1: साईं खुश आओ
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ताजी दुआ है ता ठीक आयो खुश आयो चंगा भला
1: जी जी ताजी नशरा थोड़ी थोड़ी मीरपुर खास ता सावड हले पई पो और काल मिलाने की कोशिश कई सी काल लगी वई
0: न कॉल ताजी मेहरबानी मिलाने जी ता कोशिश कई ताजी कॉल भी मिली वई आई अमा सकर बे केड़ा दोस्त शामिल थेन चाहिंदा
1: हां सब दोस्त बुदन पे सब ने दोस्तन के मुझे तरफ सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू वेरी मच भलीकार चंदा जी मीठा मानो आई दिसासी हाने कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी केर साहब है किथा का शहजाद रंगना छाला खुश आयो ठीक आयो जी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ लगी पई है थोड़ो जोर से गालाय जो
1: हेलो
0: जी जी आवाज अचे पियो हाने बुधायो बियो केर तमा सा कर बुधे पियो
1: जी असा सा गड बुधे पियो नूर मक्कन दंगुनो जमिला मन दंगुनो नंडड़ो दिलपर दंगुनो
0: तमाम घणी मेहरबानी भलीकार भा दिसनासी हाने काल ते के रहलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब आवाज अच्छी पे या न दिसना सी केर आहे कॉल ते हेलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब कॉल जरे जरे ड्रॉप थी वने सो जेडे कॉल के होता तो यो प्लीज सोचो त कॉल तांके थोड़ो जोर से गलाणो ताकि ता आवाज सही नमूने अच्छी वने आई कदे कदे थी तो कॉल जेको है जेके मेहरबान कॉल कंदा है वो आवाज बिल्कुल घट में गलाइन है वालेकुम अस्सलाम केर साहब है किथा का
1: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम भाई जान तमा केर पे गलायो
1: मरी सामारो छा खतांदा
0: जी छा हाल है खुश आयो ठीक आयो
1: हेलो
0: भाई जान त गलाइन शुरू कयो ता जो आवाज अच्छे पे
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: अफसोस यो है बार बार सागी गाल रिपीट न करियो कॉल अचे थी लाइव कॉल हुंदी आ उने जे करे सी वो कॉल कटिंग है जो रिपीट सागी गाल करे दिसंदासी त हाने स सगद कॉल ते केर है हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम वदा फिक्स आयो खैरा
0: अल्हम्दुलिल्लाह केर साहब है किथा का अब्दुर्रज़ाक दर्स किथा थरी मीरवा का छा हाल साईं खुश आयो ठीक आयो
1: अलहमदुल्ला
0: इो कें गायो आवाज़ में बुधणो जलाल चांडियो ओके कोशिश कंदासीं हाज़िर साईं जलाल चांडियो साहब केॾी देरि करे त यार अचो ॿुधाईंदासीं हाज़िर जी थैंक यू वेरी मच ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हैलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ओके शायदि कॉल ड्रॉप थी वई आहे सो ॾिसूं था त हाणे कॉल ते केरु आहे ऐं हैलो अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام جیون صبح خوش ہے خیر ہے
0: جی الحمدللہ کیر صاحب ہیں کتھا کا
1: نو تو تھر پارکر ما رام چند کمار مکوانو مخاطب
0: جی چھا حال ہے رام چند خوش ہے ٹھیک ہے
1: اللہ یا کرم لگا تواں جی ٹیم ساری خوش ویٹھی ہے
0: شکر الحمدللہ دعا لگی پئی ہے اچھا اواں سگڈ بھی کیر پہ بدے
1: دوست بدن کا تواں جی پروگرام تمام سٹھو آواز تے رینج جڑو کڈ ہی بیٹھو تے بدو
0: अले अच्छा भला मौसम थधी लॻी पई आहे थर जी भूरी भेट ते तव्हां ॿुधो पिया नोटे मां त जेकॾहिं तव्हां थर जे कंहिं फनकार जो या कंहिं बि फनकार जो आवाज़ झुंगारे ॿुधायो न उहो त आउं ॿुधाईंदुसि हुन लाइ वेठो ई मुंहिंजी ड्यूटी आहे तव्हां गाना ॿुधायो अवी ॿुधायो कॾहिं कॾहिं असांजी फरमाइश पूरी करियो हा पोइ ॿुधाए ॿुधाए ॿुधाए हाणे ॿुधाए
1: आई रे श्रामण तीजे रे

0: वाह वाह वाह वाह वाह जबरदस्त. थैंक यू थैंक यू. हुए हुए थैंक यू भलीकार चवंदासीं. जबरदस्त आवाज़ तव्हांजो. ऐं हाणे ॾिसंदासीं जी जी ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते केरु. हैलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. केर साहब ऐं किथां खां?
1: इरफान अली थेबो तालका साले पट खाबड़ी बिट गुलाबी संगत खां तव्हां संगत.
0: छा हाल आहे इरफान थेबो साहब? ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो?
1: अलहमदिल्ला बिल्कुलु ठीकु ठाक. तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीकु आहियो.
0: अलाह साईं जा एहसान आहिनि, तव्हांजो दुआऊं आहिनि. इरफान
1: चवे थी त तव्हांखे कोई सॉन्ग ॿुधाइजे.
0: वाह वाह थी वेंदी.
1: तव्हांजो आहे
0: मुंहिंजे ॿुधण जो मूड आहे. बिल्कुलु ॿुधायो ॿुधायो ॿुधायो.
1: बिल्कुल बि मूड में आयो सफ़ा.
0: अच्छा असल असल ख़बर छा आहे त हिकिड़ो असां गानो ॿुधो हाणे थर जी भिट ते वेठल असांजे प्यारे ॿुधंदड़ भाउ खां. ॿियो वरी ॿी भिट जेका सखर ज़िले में आहे खबड़ी भिट, उते हमरा वेठो आहे. ॾिसूं था हिकिड़ी भिट खां ॿी भिट ताईं जेको आवाज़ गॾिजे थो उहो सिंध जो आवाज़ कहिड़ो हूंदो. शाम जी शाम जो टाइम आहे, प्रोग्राम जो नालो पए सिंधड़ी जी शाम. त पोइ खबड़ी भिट थर पारकर न बल्कि खबड़ी भिट सखर जेका सालेपट में आहे उतां खां तव्हां असांखे ॿुधायो पिया छा था ॿुधायो? जी

सया तू मे पर दे कदहि मूसा मिलंदो न कर चांदो पिया रात में।

0: थैंक यू वेरी मच, तमाम घणी महिरबानी. टाइम वक़्तु आहे ब्रेक जो, पर हिकिड़ी कॉल ॾिसूं था केरु. हलो, अस्सलाम वालेकुम. हलो, ओके जनाब, असां कॉल वठंदासीं कमर्शियल ब्रेक खां पोइ. त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थी चुको आहे. हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे, बाक़ी ॻाल्हियूं ब्रेक.
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली.
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल.
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली. वधीक मालूमात लाइ

0: जिते जिते बि आवाज़ गूंजे त सभिनी जी महिरबानी मोहबतूं भलीकार ऐं हा दोस्तो ही आहे सिंधड़ीअ जी शाम शो ऐं आऊं आहियां वञे पंहिंजो यूनिस बकारी शामिल थियण जा ॿ तरीक़ा आहिनि हिकिड़ो आहे त मैसेज कयो लिखो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो ऐं ॿियो तरीक़ो आहे कॉल जो ऐं कॉल जे लाइ असांजो नंबर आहे 0334-3525-786 इहो आहे असांजो नंबर ऐं उन नंबर ते तव्हां असांखे मैसेज करे सघो था कॉल बि करे सघो था ओके जनाब सो ॾिसी था वठूं त असांखे कॉल ते केरु थो केरु शामिल थियो आहे जेसि ताईं मैसेज अपडेट थियनि तेसि ताईं असां वठी था वठूं कॉल खे ॾिसूं था त कॉल ते केरु आहे जी हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलाम केरु साहिब आहिनि किथां खां छा हाल आहे जिस्कानी साहिब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला मतारा जोड़ अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई आहे मौसम कीअं तव्हां वटि अलाए करे थधाण में हुजो अच्छा भला अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी
1: सॼी संगत जेका ॿुधे पई सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम चवां थो ऐं सिंगो तव्हांखे उस्ताद बुखारी जो बैत ॿुधायां
0: जी बैत कोन्हे अॼु ॻाइण जो वारो आहे ॻाइणो पवंदो ॾिसो ॻाइण ऐं रोअण हर माण्हू खे अचे थो माना जेकॾहिं मूंखां तव्हां पुछंदो ॻाइण न ईंदो आहे रोई ॾेखारींदसि तव्हांखे पोइ हाज़िर ऐं पंहिंजे इंजीनियर खे चवंदो त हाणे हाणे उहो गानो सर्च करे तव्हांजे अॻियां रखे थो केॾी देरि करे था यार चयो तव्हांखे ॿुधायूं था ॾिसूं था कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम अदा कहिड़ो हाल
0: आहे जी शुक्र है दुआ लॻी पई आहे
2: दिलीप कुमार मेघवाल
0: जी जी अदा दिलीप ॿियो अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे
2: जी मलक मोहन बलोच रामचंद मकवाण मोहम्मद ताले लगारिया प्रेमा लगारियो समली कुमार ॿिया जेके ॿुधनि पिया सभिनी खे
0: वालेकुम असलाम अच्छा भला जेकर अवां खे चइजे थोरो गुनगुनाए ॿुधायो थोरो गाए ॿुधायो त ॻाइण ईंदो आहे न मुश्किल छो आहे मूं पहिरीं सवेरे जिस्कानी साहिब खे ॿुधायो पए त रोअण ऐं ॻाइण हर माण्हू वेंदो आहे आवाज़ जो मसइलो त आहे ई कोन न असां थोरी था चऊं था रूबरू आपदा परवीन वांगुरु ॻाए ॿुधायो असीं चऊं था भले ईअं ई माना जेको मिड़े रूह खे रुलाए थोरो वाह वाह वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त लख थोरा साईं इहा तव्हांजी महिरबानी मौज़ी समईन ईअं ॻायो ॻाल्हायो ऐं हाल अहिवाल ॾियो छो त अवां ॿुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे ऐं GFM 88 रेडियो नेटवर्क अवांजी ख़िदमत में पेश करे रहियो आहे अवांजो पंहिंजो शो जंहिंजो नालो आहे सिंधड़ीअ जी शाम केरु आहे कॉल ते हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहिब किथां खां शाहपुर दरपुर खां दरपुर खां ॿुधो पिया अच्छा शाहपुर दरपुर कहिड़े ज़िले में आहे साईं तालको मटियारी ऐं ज़िलो बि मटियारी ईअं न महिरबानी लख थोरा जुग जुग जीओ सोणा साईं कुर्ब कुर्ब लख थोरा ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम ख़ालिक लाशारी ख़ुशि आई चङो भलो खैर लॻो पियो दुआ लॻी पई आहे ख़ालिक जेकॾहिं आवाज़ थोरो ॿुधण चाहियूं तव्हांजो त छा को कलाम झुंगारे ॿुधाईंदव ॿुधाए भला थोरो वाह वाह थी वञे

वाह वाह जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। जनाब साज ऐं आवाज़ जे साथ में जवां सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि ऐं जलाल चांडियो जी सदा बैकग्राउंड में गूंजी पई। आवाज़ ॿुधो पिया जलाल चांडियो साहिब जो ऐं उस्ताद बुखारी शायरीअ केॾी देरि करे तयार अचो। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। केर साहब ऐं किथां खां जी? जी छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? ठीकु कयो? आवाज़ तव्हांजो कटिजी कटिजी अचे पियो। तव्हां सां कॾहिं बि केरु पियो ॿुधे? अव्हां सां कॾहिं बि केरु पियो ॿुधे? मिठा माण्हू फैमिली ॿुधे पई? ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। महिरबानी महिरबानी मिठा माण्हू। जी जी जी, अॼु उहो कोन हलंदो, अॼु वरी को ॿियो हले पियो, तव्हां ॿुधी वठो। वालेकुम असलाम, केरु साहब ऐं किथां खां? फ़क़ीर आमिर जिंजी जो ख़ैरु हुजे। कहिड़ा हाल आहिनि फ़क़ीर साईं? जी जी, अखियुनि ते आमिर, थोरो तुंहिंजो मिठड़ो आवाज़ ॿुधूं था त पोइ कीअं ॿुधंदासीं। तव्हांजो जेकॾहिं आवाज़ ॿुधणु चाहियूं त कीअं ॿुधंदासीं? महिरबानी महिरबानी, पोइ थोरो भला गुनगुनाए झुंगारे ॿुधाए सघो था? जी जी, जेको तव्हांखे वणे, तव्हांजी दिलि जी ॻाल्हि जेका वणे।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: कस्टम्स हाउस से कब्जे वाली कोशिश भी नाकाम बनाई गई। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 10 खारजी दहशतगर्द मारजी विया। दहशतगर्दन की फायरिंग दौरान बिन कस्टम्स ऑफिसर समेत 6 जवान शहीद थिया। सिंध हुकूमत पारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमन ते होर परे वजीर तरमीमन जो जायजो वाले सूबाई वजीर ते बदल कमेटी जोड़े छी। सीनियर वजीर शचिलना मेमण, सूबाई वजीर नासिर शाह, सईद खानी, जियाउल हसन अंजार, नजमी आलम ए सलीम बलोच कमेटी में शामिल। परे वजीर मादरी शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना जो इजलास। सूबाई मालियाती एवार्ड कमीशन की तैयारी लाए अशरफ अस्ती कंसल्टेंट मुकर्र। इजलास के मकानी कानून में तरमीमन बाबत ब्रीफिंग डींदे बुधाये वो मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ए वाइस चेयरमैन जा अख्तियार ए जिम्मेवार वाजे क्यों वेंदू। वे वजीर मुआद अली शाह चयो है मकानी इदारन के वधीक फाल ए जवाबदेह बनायो वेंदो।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी साफ ए शिफाफ पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।
4: अवाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहे है। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल,
4: 6 लीटर पानी की बोतल ए बी पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रो है।
3: उनका अलावा असाव रिफल की सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे।
4: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
3: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ए बिन तकरीबन लाए हाने असा सा राबतो करो। असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ए किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जो पक्यू छिटू लगरा लाए खुश खबरी। छा चाहियो था अवां जे घरन जो छिटू पक्यू हुजन त कैश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रखंदा ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ 24 ਕਲਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹਲ ਰਹਿੰਦੋ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਓਟੀ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਆਹੇ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਸਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਈ ਵਜੇ ਥੀ। ਵਧੀਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਨਾਨਾ ਸੋਲੰਗੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 210-31-43-842।
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371800-3920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जी जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम ये आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क एकी वक्त अवां GFM मीरपुर खास GFM लाड़काणो GFM सखर GFM मोरो GFM मेहरापुर GFM सकरंड GFM मटियारी ए GFM मातली जो आवाज कनायो पिया अवने पंजो आरजे वसण मुखातिब है यूनिस बकारी मैसेज करण चाहियो था त MTI लिखी स्पेस दियो पंजे गोठ शहर जो नालो लिखी पंजे नालो 8881 ते मोकलियो कॉल करण चाहियो था नंबर है 0334352578 6 ओके जनाब कॉल अटेंड कर दासी दिसा दिसा सा कर के रहे कॉल पे हेलो अस्सलाम वालेकुम आवाज तानो घट पियो छे आवाज तानो घट पियो छे
1: अस्सलाम वालेकुम हम अल्लाह की मंदी पे जाला
0: तवन जी अल्हम्दुलिल्लाह वहां जी दुआ है तमा असन के काफी दिन का पे याद कयो है केड़ा हाल है ठीक आयो
1: अल्लाह शुक्र है तवन जी दुआ
0: शो किए थो लगे तांगे जबरदस्त तो लगे अच्छा भला असा यो ता करीब कोंदा पुछो ते तवा असा के को गानो बुधाइन ता पई जे तरफा आज असन सेगमेंट है कोन को म्यूजिक जो कोन को गानो गाय बुधाइनो सो को गानो बुधाइन चाहयो था
1: फौजिया
0: जो कलाम दे था भले बुधायो ठीक है

0: जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भलीकार, ऐं पंहिंजे दुआनि में यादि रखिजो। अलाह निगेबान, अलाह निगेबान। ओके जनाब, कॉल करण लाइ 0334-3525-786 असांजो नंबर। जी हा, 0334-3525-786। 2334-3525-786 ॾिसंदासीं कॉल ते असां सां गॾु केरु आहे, थोरो ज़ोर सां ॻाल्हाइणो आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम।
0: जी केर साहब, ऐं किथां खां? छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो नज़र मोहम्मद? अलहमद लाला, अलाह पाक जा करम आहिनि, दुआ लॻी पई आहे। जी नज़र मोहन, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: जी सर, असां कलाम था ॿुधायूं तव्हांखे।
0: कलाम था ॿुधायो? वाह वाह, ॿुधायो।

0: वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त थैंक यू मिठा माण्हू भलीकार भलीकार महिरबानी लख थोरा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केर साहब ऐं किथां खां
1: मलिक मोहम्मद बलोच ॻाल्हायां पियो मिठी थरपारकर खां
0: छा हाल आहे बलोच साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो शुक्र अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई आहे मलिक मोहम्मद बलोच अॼु असांजो सेगमेंट आहे गाए ॿुधाइणो कुझु न कुझु भले हिकिड़ी सिट ॿुधायो छा ॿुधाईंदो
1: कुझु न कुझु गाए ॿुधाइणो
0: बिल्कुलु
1: अचो कांग लवन मूंखे मारू ॻाल्हियूं यात पवन अचो कांग लवन
0: बस बस काफ़ी आहे कांगन जूं महिरबानी लवन था महबूबनि जी यादि ॾियारनि था थैंक यू मां चवां सां गॾु मलिक मोहम्मद ॿियो केरु पियो ॿुधे
1: हा साईं मोहम्मद जानदारु रेडियो लिसनर मूं वटि वेठो आहे जेको तव्हांखे सलाम पियो चए ऐं जान मोहम्मद बि तव्हांखे सलाम पियो चए ऐं कुझु दोस्तनि खे सलाम चवंदासीं तव्हांजे
0: तकिड़ो तकिड़ो तकिड़ो तकिड़ो
1: हा साईं बाबू वीरो जो दिलीप कुमार रोस्तम पंवर वफ़ा मुनीर अहमद सियाल रामचंद मकवाणो मोहम्मद सिदीक पारू जेके दोस्त ॿुधनि पिया सभिनी खे सलाम
0: कुर्ब कुर्ब महिरबानी ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: सलाम
0: जी केर साहब पिया ॻाल्हायो ॾाॾा चांडियो साहब कहिड़े ॻोठ खां टिकर जबल इहो कहिड़े ज़िले में
2: आहे
0: सईद खान कुबो में आहे अच्छा महिरबानी तव्हांजो ऐं तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी जी जी जी जी महिरबानी लख थोरा साईं महिरबानी महिरबानी लख थोरा जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में यूनुस बकारी साथ ऐं शो जो नालो आहे जी हा शाम जे कहे हे जेका सिंधड़ी जी शाम आहे उहा आहे अव्हां जे नाम ऐं सिंधड़ी शाम यकीन सिज जॾहिं लहंदो आहे शाम थींदी आहे कंहिंजी यादुनि जा वराका ईंदा आहिनि के साज़ वॼंदा आहिनि के आवाज़ वॼंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं अखियुनि मां नीर वही पवंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं मुरकूं मोटी ईंदियूं आहिनि कॾहिं कॾहिं टहक गूंजंदा आहिनि पर कहिड़ो माहौल हूंदो आहे ज़ामिन अली उन लाइ छा थो चयो अचे त गॼी ॿुधनि

0: जी जनाब, साथ में आवाज एक साथ है मेरी, सुना कॉल देख के रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। केर साहब हैं कितना कहाँ? मोहम्मद जान आरडाई भलीकार चौदासी शो में वहाँ के आमीन आमीन लखत हो रहा था जता वहाँ से कर भी केर पे बुदे। मेहरबानी लखत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, भले तव गाय बुधाए सकंदो कुछ न कुछ न बैतल अज अस आयो अज अस गायण बुध। हाँ गायण बुध, भले ही असो सिट बुधा पर गाय बुधा दिसूँ तवाज आवाज कड़ो।

0: महिरबानी लख थोरा गुलाम रसूल वरी सा महिरबानी ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे असां सां गॾु ॾिसंदासीं हलो अस्सलाम वालेकुम छा हाल आहे चाचड़ साहब ख़ुशि आहे चङो भलो मतारो जोड़ भाउ हा महिरबानी भला भाग मुंहिंजा साईं भला भाग
1: हिकिड़ो अर्ज़ु प्यारा भाउ लाड़काणे में ॿ घंटा प्रोग्राम कनेक्ट कराइण तुंहिंजी वॾी वॾी महिरबानी
0: इनशाला इनशाला इनशाला अच्छा भला ॿियो अॼु असांजो मौज़ू आहे गाए ॿुधाइण भला छा कुझु गाए ॿुधाईंदव एॾो आवाज़ तव्हांजो प्यारो आहे जी जी

0: खुशायो ठीक है।
1: जमाली मोहम्मद मेहराब, जमाली गुलाम कादर, जमाली मेहताब अहमद, जमाली मोहम्मद रमजान, जमाली अब्दुल कबीर खान, जमाली अब्दुल राशिद खान, जमाली सन्नाला खान, जमाली नूर मोहम्मद, जमाली बशीर अहमद, जमाली नजीर अहमद, जमाली

महिरबानी लखत वारा कुर्ब मिठा माण्हू लखत वारा ओके जनाब यूनिस बकारी इन साथ साण अवां जो साथ आहे जुड़ियल पर अवांखे ॿुधाईंदा हलूं वक़्त जो अहसास असांजा थिया आहिनि छह लॻी छवीह मिंट में बाक़ी असांजो तव्हां सां हूंदो 34 मिंटनि जो साथ 34 मिंटनि जे साथ में गीत संगीत साज़ ऐं आवाज़ हूंदा दीबा सहर जो आवाज़ गॾिजी ॿुधी वठो थोरो ही जेको सॉन्ग आहे उहो जिन जिन फनकारनि गायो आहे उन्हनि इनखे यादगार अंदाज़ सां गायो सरमन सिंधी गायो मुख़्तलिफ़ फनकारनि गायो आहे पर दीबा सहर हिनखे थोरो नए अंदाज़ सां अञा बि गायो अनवर कमराणी जी शायरी आहे जॾहिं हिन दुनिया मां गुज़ारे वेंदासीं घणनि खे असीं बिरवारे वेंदासीं।

थैंक यू थैंक यू मेहरबानी लखत थोड़ा डिस्टेंस हाणी कॉल ते के रहलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब कॉल ते की राहे डिसंदा सी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी हेलो आवाज अचे पियो साईं ओके कॉल कटजी वही है पाण मुमताज मौलाई जी आवाज की गजी गजी बुधाऊ पे थी लगे मुखे हुन जे शहर की हवा थी लगे न दुआ थी लगे इन ट्रैक सा करो ब्रेक हुंदो बाकी अध कला के साथ हुंदो बिना ब्रेक यूनुस बकारी वापस इंदो जो तो प्रोग्राम है जारी हो सारी नंडड़े ब्रेक का वापस इंदो यूनुस बकारी के दन में

0: जी जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क मसण वखाते शो जो नालो आहे सिंधड़ी जी शाम आर जी आहे वने पंजो यूनुस बकारी अवा हिकी वक्त बुधो पे जी एफ एम मातली जी एफ एम मेर प्रकाश जी एफ एम मटियारी जी एफ एम सकरंट जी एफ एम मेहरापुर जी एफ एम मोरो जी एफ एम सखर ऐं जी एफ एम लाड़काणो आवाज़ जी दुनिया में मोहबतुनि जो मेलो प्यार ऐं पंहिंजा पिया ख़ूबसूरत रंग खणी वञी ख़िदमत में हाज़िर आख़िरी 15 मिंटनि जे लाइ बल्कि 25 मिंटनि लाइ शायदि ओके त पोइ ॾिसंदासीं कॉल ते असां सां कहिड़ा नंबर आहे 0334352578 नंबर असांजे हिन ते कयो कॉल ॾिसंदासीं केरु हूंदो हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहब ऐं किथां खां जी छा हाल अला रखिया खोसा साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अलहमदुल्ला दुआ लॻी पए तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी महिरबानी लखत वारा मिठा माण्हू लखत वारा ओके ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम यूनुस भाउ कहिड़ा हाल आहिनि
0: भाउ दुआ आहे केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे अमदाणी साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला मतारा जोड़ हा बसि ईअं नसीब जी ॻाल्हि आहे फोन मुंहिंजो असल में ख़बर छा आहे जेके भाइण वारा भाईंदा आहिनि उन्हनि जी कॉल सभिनी जी कोशिश हूंदी आहे त लॻे पर हाणे हज़ारे दोस्त महिरबान भेनरूं भाइर एतिरो भाइनि था वरी कॉल जेके उहे लॻंदियूं थोरियूं सो बहरहाल इहो तव्हांजी मोहबतूं आहिनि कॉल लॻे न लॻे मोहबतुनि जो सिलसिला जारी ओसारी अव्हांजो ख़िदमत गुज़ार अव्हांजो पंहिंजो यूनुस बकारी जी
1: अच्छा
0: हा फरमाइश हिन में ॾिसो न बेक टू बेक कॉल पई हले त फरमाइश पूरी थिए घटि थी पर फरमाइश जेका आहे न उहा तव्हां पहिरीं कलाक में अञा कंदो त थी वेंदी पूरी पर ख़ैर को मसलो कोन्हे कल्ह तव्हां कहिड़ी फरमाइश कई चलो उर्स जे आवाज़ में अॼु मुंहिंजी पसंदि ते उर्स जे आवाज़ में कलाम तव्हांजे लाइ प्ले करे रवानो थी वेंदुसि जेॾी महिल पोइ ॿुधजो ठीकु आहे साईं भला अव्हां खां जेकॾहिं फरमाइश कयां तव्हां कुझु गाए ॿुधायो त
1: पोइ
0: असल में गाननि जे विच में त मुनासिब कोन थो लॻे पर ठीकु आहे भले ॿ सिटूं ॿुधायो बिस्मिल्लाह

0: जी जी
1: हेलो
0: ॿुधो पियो भाई जान ॿुधां पियो महिरबानी लख थोरा लख थोरा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे साईं ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो रब पाक जे रहमतुनि में हुजो आबाद हुजो अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे
1: मूंसां गॾु मुंहिंजो नंढो ज़ैनुल आफ़ीन भाकरे पियो ॿुधे मूंसां ॿियो भाउ आहे नातीन वीचारो उहो बि ॾिसी ॿुधे पियो मां पाण नातीन आहियां
0: जी जी
1: हा ॿियो मुंहिंजा मामा ॿुधो तव्हां कंबर शहर खां
0: जी जी नाला वठी वेठो नाला हुननि जा खणो
1: जी हा हाफ़िज़ अहमद नवाज़ सिंधी और फरहान कोरी तारिक कोरी और ज़ैब कटवर मुंहिंजो नालो पंहिंजो
0: जी जी ज़ैब
1: ज़ैनुल आफ़ीन कटवर बिलावल कटवर मुसीब रहमान
0: महिरबानी लख थोरा साईं लख थोरा
1: अलाह ख़ुशि कंदव अलाह ख़ुशि रखंदव
0: आमीन आमीन सुम आमीन लख थोरा ओके जनाब ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते
1: असां सां गॾु
0: हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम जहिड़ा कहिड़ा आहिनि चार दुआ
0: जी अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां
2: जहिड़ा पलकार खां बरकत वारी फोटो थो ॻाल्हायां
0: जी अदा बरकत लख थोरा मां त गॾु बि केरु पियो ॿुधे महिरबानी लख थोरा ॾिसंदासीं कॉल ते हाणे केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम साईं
0: साईं केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे नज़ीर अहमद मंगरियो साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो
3: अलाह साईं जेसां तव्हां ॿुधायो बिल्कुलु ख़ुशि आहियां पिया
0: अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई आहे अव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे साईं
3: नबी बख़्श नंबर बिजरानी आहे
0: जी जी
3: भॻवान मोहन वटि
0: जी जी
3: इरफान थेबो गुलाम हैदर प्रोपोर जेके संगत ॿुधी रहिया आहिनि सभिनी खे अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम कहिड़े कुर्ब मिठा माण्हू लख थोरा तव्हांजा अलाह हाफ़िज़ ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब कॉल ते ॾिसंद असां सां कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां जी तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे अदा जी जी जी जी जी जी महिरबानी लख थोरा कुर्ब मिठा भाउ मां उमरकोट खां यादि कयो ॾिसंदासीं हाणे केरु पियो ॿुधे हलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम
0: केरु साहब ऐं किथां खां जी गुलाब गुल साहब अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे कुर्ब वालेकुम अस्सलाम ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
6: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां जी गुलाम रहीम बलोच साहब लख थोरा अवांजा यादि करण जे लाइ कहिड़ी ख़बर चार जी अलहमदुल्ला तबियत वी आई पी लॻी पई आहे कहिड़े कुर्ब तव्हांजा ख़ुशि जो आबाद हुजो महिरबानी मोहबतूं मिठा माण्हू वालेकुम अस्सलाम कुर्ब साईं लख थोरा ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहब ऐं किथां खां जी नालो कोन था ॿुधायो कावड़े आयो नाराज़ आहियो अच्छा ठीकु आहे नाराज़गी आहे त मां तव्हांखे बसि मिंत करे सघंदो कलाम ॿुधाए सघंदो ऐं तव्हांखे तव्हां राज़ी थी वञो ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहब ऐं किथां खां जी भुटा भाउ ब्रेक जो टाइम अची वियो आहे तव्हांजी कॉल जूं महिरबानी लख थोर ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिंजो नालो वठो जल्दी जल्दी वठी वठो महिरबानी लख थोर कुर्ब ओके मोज़िस फ़ातिह हज़रात हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे ब्रेक खां पोइ मां ईंदुसि ऐं वरी पोइ अव्हां खां मोकिलाए हलियो वेंदुसि छाकाणि जो 45 वारो ब्रेक सफ़ा शॉर्ट ब्रेक आहे भई जो वापसि

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ

0: నుంచి కాల్ పెట్టి రాయించిన కథ. హలో, అస్సలాం అలైకుం. జీ కేర్ సాప్ గలయో जी जी छाल है कच्चे खाओ कचो माना जो है एकड़ो तो इलाको है जेका बबाद जो एकड़ो शायद है इलाको घोटकी डिस्ट्रिक्ट जो
1: शिकारपुर तो शिकारपुर
0: तो अच्छा शिकारपुर जो शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट लगे तो अच्छा अवां सा गद भी केर पे बुदे
1: मजो सोटो आका बिल्लो
0: जी जी
1: हां पुत्तो
0: जी जी
1: अच्छे रिटायर
0: जी जी जी जी मेहरबानी वालेकुम अस्सलाम मेहरबानी मिठा मानू लख थोरा तां जा जी मेहरबानी लख थोरा दिसदासी थाने से कॉल त केरे आखरे लमा त निकर तफसीली गुफ्तगू कोन पिया कयो सबब यो है त असन जे वणणे वक्त बिल्कुल वेझो आहे सो जनाब गाल पे केसी ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे असां सां गॾु. हलो, अस्सलाम
1: वालेकुम.
0: रहड़ी खां मीर खादिम हुसैन टालपुर साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला, मतार जोड़ अला साईं जा अहसान आहिनि. महिरबानी महिरबानी साईं, अवां सां गॾु ॿियो केरु केरु पियो ॿुधे? जी जी जी जी
1: मलिक
0: जी जी
1: हुसैन मलिक
0: जी जी
1: इकरार हुसैन मलिक
0: जी जी
1: जी सर.
0: महिरबानी साईं, लख थोरा यादि करण जे लाइ किरोड़े कुर्ब.
1: साईं कलाम ॿुधायो न तव्हांखे.
0: हा कलाम ॿुधायो, भली ॿुधायो.
1: सुख जा सांगे यारा मोटी छाल मिल.
0: हा गाए ॿुधायो, गाए ॿुधायो
1: सर,
0: गाए ॿुधायो. सुख जा सांगीअड़ा मोटी शाल मिलन. ईअं ॿुधायो.
1: सुख जा सांगीअड़ा मोटी शाल मिलन, मोटी शाल मिलन, पिछड़ियूं की न वञन. इहो आवाज़ मरूं मोहम्मद इब्राहिम जो आहे, ॿुधायो त महिरबानी थींदी
0: साईं. महिरबानी, लख थोरा कुर्ब तव्हांजा, कुर्ब तव्हांजा. ओके, ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम
0: सलाम. केरु साहिबु?

ॾिसंदा सी कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज अचे पियो साईं? आवाज यकीनन कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे। सुरैया जो आवाज ईशो अवांजी खिदमत में जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम चैनल्स तां पेश थी रहियो आहे। शो जो नालो आहे सिंधड़ीअ जी शाम ऐं अवां जो आर जे आहे यूनिस बकारी, जंहिंजूं मोहबतूं अवां जे नाम।

0: ॾुखिया सुखिया ॾींहं अहिड़ा गुज़ारे छॾियासीं के नथा विसरनि के विसारे छॾियासीं। रोअण जी आदत त कोन हुई अखिड़ियुनि खे, पर रुनासीं त राज बि रुआड़े
1: छॾियासीं।
0: मुझी मर्जी कोन हलंदी मिठा माण्हू, वक़्त खां वक़्त ताईं हलणो
1: आहे।
0: ईअं न आहे, ईअं न आहे, ईअं न आहे। कुर्ब कुर्ब कुर्बान कुर्ब थो वञे, कुर्ब कुर्बान थो त कुर्बान वञे, कुर्ब ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो आवाज़ सुन पियो अचे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। टाइम बिल्कुल सफ़ा घटि, इन जे करे मूंखे कॉल मजबूरन ड्रॉप करणी थी पए। जॾहिं बि कॉल कयो त प्लीज इहो सोचो त कॉल मुंहिंजो आवाज़ अचणु घुरिजे। वञण वक़्तु थी चुको आहे, पर दर्द जी ॻाल्हि हूंदी आहे त दर्द बणजी दिल अंदरि रहंदो न कर ऐं लुड़क बणजी अखियुनि मां वहंदो न करत में। जे मिलण नथो चाहे मूंसां त ख़्वाबनि अंदरि मिलंदो न। मिसाल जे विछड़ी वञूं त पोइ छा थींदो, उर्स चांडियो जी सदा में इहे समूरियूं ॻाल्हियूं आहिनि, पर अव्हां जो यूनुस बकारी वञण चाहे थो, का ग़लती गुस्ताखी थी हुजे त माफ़ी जो तलबगार आहे। ईअं न आहे त तो सवाइ जी न सघबो, पर ईअं आहे जीअं तो सां तीअं कंहिं ॿिए सां रही न सघो। वरी उर्दू जे शायर चयो त जब भी चाहो मुझे बुला लो, मैं गया वह वक्त नहीं के फिर लौट के ना। चङो यारो यारी मोकिलाए थो अव्हां खां अव्हांजो पंहिंजो यूनुस बकारी इन दुआ सां, जिते बि अव्हां जो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैर ई ख़ैर हुजे। उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं, निमन जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अव्हां जो मुक़दरु बणजनि। साथ सलामत सिक सलामत असांजो अव्हांजो पाण सभिनी जो, अल्लाह निगेबान।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध हुकूमत पारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तर्मीमन ते गौर। वे वजीर तर्मीमन जो जायजो वठण लाए सूबाई वजीर ते बदल कमेटी जोड़ी छी। सीनियर वजीर शजील इनाम मेहमान, सूबाई वजीर आसिफ शाह, सईद गनी, चालनजार, नजमी आलम ए सलीम बलोच कमेटी में शामिल। वे वजीर मोहम्मद अली शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना जो इजलास। सूबाई मालियाती अवार्ड कमीशन की तैयारी लाए अशरफ फास्ती कंसल्टेंट मुकर्रर। इजलास के मकानी कानून में तर्मीमन बाबत ब्रीफिंग डींदे बुधाया वो तो मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ए वाइस चेयरमैन जा इख्तियार ए जिम्मेवार वाजे क्यों वेंदियों। वे वजीर मोहम्मद अली शाह है तो मकानी इदार के फाल ए जवाबदेह बनाया वो।
2: सिंध काबीना बलदियाती निज़ाम में रिफॉर्म्स करने का फैसलो किया मुशरफ तौर और पुरानो निज़ाम बहाल पे क्या
3: सूबाई असेंबली जो अख्तियार
2: मुशरफ
3: कड़ा मन सुना
2: सिक्किम जो प्रेशर आते या इस्लामाबाद जो प्रेशर आ दिल्ली जो प्रेशर आ कें जो प्रेशर आ निज़ाम अचानक एमरजेंसी में मीटिंग छो कॉल की सिंध काबीना की रिफॉर्म
3: प्रेशर जैसे हुए तो अस हिं न गल
4: जैसे लगे तो सिंध में डिवीजन्स घटा जिला घटा तो उन्हें गाल थी सके ना जिला ठा सकन था डिवीजन्स बढ़ा सकन था
5: सिस्टम फेल जो चवे तो उनकी कर इस्तीफा दियण खपे जन उन सिस्टम में पा आन
6: आयू बरोच पर सिंधी आयू सिंध में रहूं था सिंध से मरदा सिंध से जीअं
7: उनके एम्पावर करण खपे ताकि लोकल मान जहा मसला हल थन सीएम साहब कमेटी ठाई आ सुठी गाल तो वो पॉजिटिव कदम आके मसला मसाइल हलन था सूबे के हवाले से बिन हवाले से उनको हल भी इतनी निकल
8: मुशरफ वो दौर बिल्कुल बहाल
9: नके चेयरमैन्स या मेयर्स वो कंटिन्यू कदा जैसे नई इलेक्शन थे वो जरूर थो बाकी कुछ अमेंडमेंट असेंबली में इंदू स्टैंडिंग कमेटी में भी स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन कदी।
1: छा सिंध में अगोड़े आमिर परवेज मुशरफ वारो मकानी निज़ाम बहाल थी रो है केटीए न्यूज सिंध काबीना के मेंबर्स एमपीएस का सवाल। निसार खोड़े है तो मुशरफ के न तो सुना सूबे लाए सिंध असेंबली को भी निज़ाम जोड़े सके थी कें जो भी दबाव ना है निज़ाम की बेहतरी लाए केर चवे तो एतराज न होने घुर्जे। सूबाई वजीर सईद गनी है तो सिंध में को भी पुरानो मकानी निज़ाम न इंदो मकानी कानून में तरमीमन की गाल थी रही है निज़ाम तब्दील न थो सिंध में डिवीजन या सिला वधायण वाले मामले से गाल बोल थी सके थी। एमपीए सरदार चांडियो निज़ाम के नाकाम छदींदड़ घरू वजीर की कुर्सी से छो वेठो है। मोहम्मद बख्श मेहर तो मकानी निज़ाम से मुशावत थी थी को भी दबाव ना है। राजा रजाक निज़ाम तब्दील न पो थिए सुधारा अचान घुर्जन। मोहम्मद अली मलकानी मुशरफ वारो मकानी निज़ाम न इंदो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशखबरी
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786।
4: जी हा 2311-2525-786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़
8: करो छो।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM सिंध का। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

असा जिन के चाहो अस जिन के पूजो डीन सा सजे रात जलंदा त हुंदा जिथा पान विछड़िया हुआसी उतां अज कई हथ डे हथ में।

असांखे कोशिशि करणु खपे त असां शुक्र कयूं ऐं जेका बि अलाह पाक जे तरफ़ा असांखे मौसमूं मिलियूं आहिनि ऐं उन्हनि ते बि असांखे शुक्र करणु खपे छो त हू बहितर ॼाणंदड़ ऐं करीम रब आहे। प्रोग्राम आहे रूह रिहाण ऐं रूह रिहाण में अॼु आऊं तव्हां सां मुख़ातिबु यकीन तव्हांजो पंहिंजो आर्चे।

पा फैसल अमदानी साहब लखमो तो मिठा मानू तक याद कर मोहब्बत में याद कर चाहत में याद कर असा मुसाफिर आवाज बशीराबाद बोरी तई वे पो यकीन वही मेहरबानी असाजा सर युनुस बकारी साहब अस बुधन था दानिश बकारी साहब लख थोरा मोहब्बतन जो सफर है यकीनन मोहब्बतन भरी बज़्म है।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अघु ते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
8: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
5: जी हा, 2315-25-786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।
9: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

रन पाओगे कभी भुला कर देख लो, रन पाओगे कभी भुला कर देख लो, यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। हर जगह महसूस होगी हमारी ही कमी, अपनी महफिल को कितना भी सजा कर देख लो। वेलकम करते हैं आप सब लोगों को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है जीएफएम मातली 90.4 को, जहां जहां हमारी ये मुसाफिर आवाज पहुंच रही है उन सब समातों को वेलकम करते हैं एक बार फिर। मरू रेहान में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आप एक मैसेज करें, हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। मैसेज करने के लिए तरीकेकार बिल्कुल आसान है, मोबाइल की राइट ऑप्शन में जाएं, वहां टाइप करें MTI, जी हम MTI टाइप करके फिर थोड़ा स्पेस दें, स्पेस के बाद अपना नाम, शहर गांव का नाम लिखकर, अपना नाम और जो लिखना है लिखकर हमें वो मैसेज 8881 पे सेंड कर दें। जैसे ही आपके खूबसूरत मैसेज इस समय मौसूल होंगे हम फौरन अपनी बज़्म रूह रियान में शामिल करेंगे। समिन असो आवाज जिथे जिथे जिथे माग जै वायण वसंदी पहुंचे पे उन मिडनी मानायतन मेहरबान के भेरों बीहर आर्ज मोहम्मद खान मेहरी जो सिक भर सलाम शाल कबूल पवे। खोड़ सारा वहां मोहब्बत नामा पहुंचन पाया चाहत जिनमें चाहतू आन जिनमें खोड़ सारे मोहब्बतू आन कड़ियों कंवर वो माग असाजी लाड़ जो उन शहर में वह हस्ती वह बुजुर्ग हस्ती मौजूद है खलीफा हजरत महमूद फकीर निजामानी कामिल वली है यकीनन उन नगरी का उन नस्बत से असा महबूब साई बुधन पाया सीनियर साफी आन बेहतरीन मजमून निगार आन बेहतरीन शायर आन खलीफा सतार निजामानी साहब। खलीफा सतार निजामानी साहब असा मोहसन वडा वड़ी मेहरबानी साई त मोहब्बत में याद किया है नंढड़ो जीएम बाबा भी असा बुधे तो नंढड़ो नंढड़ो जीएम बाबा जो है वो असि मोहब्बत चाहत प्यार प्यार से हमेश कनाई है जडे असो शो ना तो जरूर असाजे शो के मिस कन् जीएम बाबा वड़ी मेहरबानी। खलीफा मोहम्मद आशिम निजामानी साहब असा बुधा वही मेहरबानी साई त प्यार मान के भलीकार खलीफा साई सतार निजामानी साहब तकाय दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीने ते उन तारीख उन दिहाड़े से तमाम सभी मुसलमान भैर आलम इंसानियत के मुबारकबाद चई है साई खैर मुबारकू पूरी टीम के तुम मुबारकू डिन वही मेहरबानी असा तहज मोहब्बत थोराता हूं साई खलीफा सतार निजामानी साहब। तो नेक्स्ट मैसेज पहुतो है उनमें हिंदू कम्युनिटी के दोस्तों के मुबारकबाद दिनी है यकीनन थदड़ी जो त्यौहार है। जीएफ मातली 90.4 जी लाइव स्टूडियो में ताजो मोहब्बतू ताजा प्यार पहुंची चुका वड़ी मेहरबानी। मैसेज असा तई पहुतो है सईद अली छलगरी साहब जो वड़ी मेहरबानी मिठा मानू ताजा ब मैसेज पहुता है। सईद अली छलगरी साहब मोहब्बत चाहत में तक प्रोग्राम रूह रियान में भलीकार लिखो त रात की नसात में तुझो मधुर आवाज बुधी कर असि खुशी थी वही मेहरबानी मिठा मानो। मैसेज असा तई पहुतो है लिखला था मोहम्मद खान मेहरी तवाजो प्रोग्राम माशाला तमाम जबरदस्त भलो है असा बुधी रहा हूं रेण वाह का मोहम्मद कासिम शाह काशिफ शाह दिलदार मला महबूब समातन जा महबूब साई तक भलीकार चवंदे जो महबूब समातू आन सुहणियों समातू आन भलियों समातू आन जबरदस्त समातू आन सुठन समातन के मालिकन के सुठा वास वणदा सो वडा वड़ साई तहजा मोहम्मद कासिम शाह काशिफ शाह दिलदार मला मोहब्बत मिठा मानो। वरी भी मैसेज असा तक पहुतो है सईद अली छलगरी साहब जो वही मेहरबानी मिठा मानो। गोठ छुट्टो खान सोलंगी का असा के मोहम्मद अजीम सोलंगी साहब मोहब्बत चाहतन में याद किया नूरदीन सोलंगी तवासा गडा है अशरफ सोलंगी तां लिखा त भाई जान क्या हाल है प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है वडी मेहरबानी मिठा मानू।
گھٹ چھٹو خان سولنگی جا اسا محبوب سماعتن جا مالک اسا تمام پرانا پرانا بدندڑ محبوب سماعتن جا لسنر ہیں محمد عظیم سولنگی نور الدین سولنگی اشرف سولنگی با وڈی مہربانی تا کے روح ہریان میں بھلی کار جارکی کا اساں کے یاد کندا ہیں قربدار کرڑ بھیل صاحب قربدار کرڑ محبت تانجو کرم تاں سا کدا ہے لکھ تھورا تاں سا کے محبتن میں یاد کیو ہے قربدار کرڑ تاں جا لکھ تھورا تاں خوبصورت سماعتن جا مالک ہو۔

थरपारकर जो ॻोठ आहे झुरबी थरपारकर खां, उतां असांखे महबूब समातन जा असांजा महबूब लिसनर आहिनि वफ़ा ग़ुलाम रहीम बलोच साहिब यादि कनि पिया लिखंदा मोहम्मद ख़ान जो ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे वफ़ा ग़ुलाम रहीम बलोच। वफ़ा वफ़ा तव्हांजो ज़बरदस्त समातूं आहिनि। असांखे यादि कयो आहे ॻोठ सोराब खान निज़ामाणी खां मोहबती मंगण निज़ामाणी, मोहबती मंगण खां निज़ामाणी बि रेडियो जो उहो बाज़ोक ॿुधंदड़ आहे। एहसान मंगण तव्हां सां गॾु वॾी

पोड़ो खान नुआणी असांखे ॿुधंदो आहे. पोड़ो खान नुआणी कहिड़ो कमर जे पटनि तां वॾी महिरबानी तव्हांखे भलीकार. सईद अली छलगरी साहब जो वरी बि मैसेज पहुतो आहे. सईद अली छलगरी साहब, इहे तव्हां जूं मोहबतूं आहिनि मिठा माण्हू, तव्हां रूह रिहाण में असां सां रिहाण में गॾु गॾु आहियो.

असांजा महबूब ॿुधंदड़ आहिनि गोठ जाम खान लगारी खां असांखे अली रज़ा लगारी मोहबतुनि में यादि कंदा रहंदा आहिनि। मिठा माण्हू तव्हां लिखियो था मोहम्मद खान मेहरी, अस्सलाम वालेकुम। अदा कैसे हो सॉन्ग प्ले करना मिसाल जे विछड़ी वञू। हाणे हाणे सर यूनुस बकाई साहब जो प्रोग्राम हो।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: जेकर है तवां के मैदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-8879 ऐं 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

अज पुण अखिड़ियन सजन पंहिंजा सारिया गलनि तां गोड़नि जूं बूंदूं बस न कनि सिंधी सिक पिरियन लोक ॾिठे न लहे भलीकार चवंदासीं हिकु भेरो ॿीहर रूह रिहाण प्रोग्राम आहे रूह रिहाण में अॼु आऊं तव्हां सां मुखातिबु तव्हांजो पंहिंजो आरजे मोहम्मद ख़ान मेहरी सभिनि जे करे तव्हां असांखे पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास ॾियणु चाहियो था त उन जे लाइ तव्हां चाहियो था त रूह रिहाण में असां बि शामिल थियूं त उन जे लाइ तव्हांखे तरीक़ेकार ॿुधाईंदो हलां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा MTI थोरी स्पेस ॾींदा पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखंदा तंहिं बैदि मैसेज असांखे 888-1 ते सेंड करे ॾींदा जीअं पंहिंजा ख़ूबसूरत नाला असां ताईं पहुचंदा असां रूह रिहाण में कंदासीं शामिल थोरा सारा मोहबत नामा तव्हांजा पहुची चुका आहिनि त उन्हनि खे बि प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं अमीर बख़्श छलंगरी साहब सईद अली छलंगरी साहब जो वरी मैसेज पहुतो आहे वॾी महिरबानी मिठा माण्हू तव्हांजो वरी बि मैसेज पहुतो आहे अमीर बख़्श छलंगरी सईद अली छलंगरी साहब वॾी महिरबानी खोड़ सारा मोहबत नामा तव्हांजा अॼु पहुता आहिनि ॻोठु झपियो थर खां मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो ऐं रोशन अली पाड़ो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मिठा माण्हू ॻोठु झपियो थर खां असांखे मोहबतुनि में यादि कयो आहे मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो ऐं रोशन अली पाड़ो तव्हां लिखियो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम प्रोग्राम रूह रिहाण में तव्हांखे भलीकार चवंदासीं मिठा माण्हू हुजत लगारी तव्हांजो मैसेज पहुतो आहे सुल्तान लगारी अब्दुल हकीम लगारी ऐं नंढड़ो सद्दाम हुसैन लगारी असांजा तमामु पुराणा ॿुधंदड़ ऐं लिसनर अॼु असांखे यादि कनि पिया हुजत लगारी तव्हांजो मैसेज पहुतो सुल्तान लगारी अब्दुल हकीम लगारी नंढड़ो सद्दाम हुसैन लगारी वॾी महिरबानी तव्हांखे रूह रिहाण में भलीकार ॻोठु सोराब खां निज़ामाणी खां

छोकी जनाब रसरेण प्रोग्राम आहे ऐं मोहबतुनि जो सफ़र आहे ऐं मोहबतुनि जे सफ़र में जेकॾहिं तव्हां असांखे वरी बि यादि करणु चाहियो था ऐं मैसेज करणु चाहियो था त तरीक़ेकार तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा एम टी थोरी स्पेस ॾींदा पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे ऐं मैसेज सां गॾु 888 ते सेंड करे ॾींदा जीअं 88 ते तव्हांजा जीअं मोहबत नामा पहुचंदा असां प्रोग्राम में कंदासीं शामिल। दौरान सफ़र असांखे ॿुधनि था असांजा स्टेशन मैनेजर सर।

बकारी साहब ऐं दानिश बकारी साहब, वॾी महिरबानी मिठा माण्हू, तव्हां दौरान सफ़र असांखे चूंड कयो आहे, इहे तव्हां जूं मोहबतूं आहिनि। असांजो दुआऊं तव्हां सां गॾु, तव्हांजो सफ़र बाहिफ़ाज़त थिए, सुहानो सफ़र थिए। सो हलंदासीं अहिड़े ख़ूबसूरत गीत जे तरफ़। असांखे केरु सारींदो, असीं विसरी वियल माण्हू। किरदार किरण भील साहब, तव्हां बि फ़रमाइश कई अलादीन जुणे जे जी।

आहा असीं गुजरी वियल माण्हू जॾहिं माण्हू सारण यादि करणु छॾे ॾींदा आहिनि त अहिड़ा अहसास जेके आहिनि उहे अंदरि मां आहा जी शिकिल में निकिरंदा आहिनि यकीन ऐं मयारनि जी शिकिल में निकिरंदा आहिनि। अला ॾिनो जुणी जो साहिब चवे पियो त असांखे केरु सारींदो असीं विसरी वियल माण्हू असां कोन विसरिया आहियूं। तव्हांजा मैसेजिस पैगामनामा खोड़ सारा अचनि पिया, इहे तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि।

0: Water is the lifeblood of our region. It sustains millions of lives, nourishes our lands, and secures the very future of our coming generations. It must never be weaponized. It cannot be used as an instrument of coercion, nor can it ever be exploited for political leverage. The treaties governing our shared waters are solemn binding international commitments. They are not matters of political conveniences to be cast aside at your will. They must be honored unconditionally in both letter and spirit.
1: पाणी खिते जे माण्हुनि लाइ लाइफ लाइन आहे. पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं. पाणी खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौर इस्तेमाल कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो. शिंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरकारी इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिब अमल थियणु घुर्जे. मक्का दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिं जे ख़िलाफ़ नाहे. इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश बि ख़िते में अमन जी बहाली लाइ अहम आहे. दहशतगर्दी बि ख़िते जे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे. पाकिस्तान इलाके में जटादार अमन जे क़याम लाइ पुरअज़म आहे. ॾखण एशिया मुकमल अमन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिल नथो करे सघे. सिंध हुकूमत पारां लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमनि ते ग़ौर. वरी वज़ीर तरमीमनि जो जाइज़ो वठण लाइ सूबाई वज़ीरनि ते वधल कमेटी जोड़े छॾी. सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मिमण, सूबाई वज़ीर नासिर शाह, सईद ग़नी, जालन जार, नज़मी आलम ऐं सलीम बलोच कमेटी में शामिल. वरी वज़ीर मुआद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास. सूबाई मालियाती एवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वास्ती कंसल्टेंट मुक़ररु. इजलास खे मकानी कानून में तरमीमनि बाबति ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा अख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़े कयूं वेंदियूं. वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मकानी इदारनि खे वधीक फ़ाल ऐं जवाबदेह बणायो वेंदो.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल.
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशि ख़बरी. छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
10: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
8: जी हा, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

ना छोड़ दिया, हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। मैंने कहा रास्ते हैं दुश्वार बहुत, उसने तब से साथ निभाना छोड़ दिया।

मलिकार चवंदा सभिनी खूबसूरत समातन के तमाम रस रिहाण में जेके महिरबान हाणे हाणे असांखे असां सां जुड़ी चुका आहिनि पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास ॾियनि पिया। पुरसराम जा नाला पहुची चुका आहिनि, हुनखे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं। ॻोठ झपियो थर खां वरी मैसेज पहुतो आहे मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो साहब जो ऐं गुलाम रहीम बलोच तालिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ॻोठ झपियो थर खां मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो साहब वॾी महिरबानी मिठा माण्हू ऐं गुलाम रहीम बलोच साहब जो मैसेज तव्हां सां गॾु नालो अॼु आहे गॾु ऐं वॾी महिरबानी तव्हां पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास ॾिनो आहे। लख थोरा मिठा माण्हू मैसेज ॾिसण ताईं पहुतल आहे। लिखियलु अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो। ॻोठ जाम खान ख़ासि कैली खां ख़ातिम हुसैन ख़ातिम हुसैन पुलिस तां लिखियो आहे।

भलीकार चवंदासीं रसरियाण प्रवाह में रसरियाण प्रवाह में तव्हांजो पंहिंजो आरजी मोहम्मद ख़ान महिरी तव्हांजो पंहिंजो चैनल जी एफ एम रेडियो नेटवर्क जो चैनल जी एफ एम मातली 90.4 जेके महिरबानी असां सां हाणे हाणे जुड़ी चुका आहिनि उन्हनि समूरनि समातनि खे प्रोग्राम रसरियाण में चवंदासीं भलीकार। जेकॾहिं तव्हां बि प्रोग्राम में शामिल थियण चाहियो था त आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा MTI थोरी स्पेस ॾींदा, पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 8881 ते असांखे सेंड करे ॾींदा जी 8881 ते। कुनरी खां चोवन कुमार कोहली असांखे यादि कंदा आहिनि, रेडियो जा बाज़ुक ॿुधंदड़ आहिनि, बहितरीन लेखक बि आहिनि, वॾी महिरबानी मिठा माण्हू, तव्हां लोचींदड़ आहियो, हमेश मोहबत में यादि कंदा आहियो। डॉक्टर अनीता चौहान सां तव्हां सां गॾु संगीता पारस पको मोड़ खां सेठ लालचंद कोहली बि तव्हां सां गॾु गॾु असांखे कनाए पियो। चवन कुमार कोहली साहब मोहबत आहिनि तव्हांजो, डॉक्टर अनीता चौहान, संगीता पारस, लालचंद कोहली

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तरीका चवंदा सभिनी खूबसूरत समातुनि खे यकीनन तव्हांजा मैसेज सचनि पिया उनखे बि शामिल कंदा हलूं ऐं गॾोगॾु तव्हांजी

दीवा सर जो आवाज तांजे समाज ने नाम करे चुका है शहर खिपरे मोरी का यूसुफ चांग साहब याद कियो असन के बड़ी मेहरबानी मीठा मानो तांजो मैसेज पोतो है खिपरे मोरी का यूसुफ चांग तांजो मैसेज पोतो बड़ी मेहरबानी मैसेज पोतो है फा गुलाम रहीम बलोच जो जुड़ी थर पार कर का तां लिखो मोहम्मद खान तांजो पिले हिल वस्कारा वा पर तू न हुई बोल लिखे हैं के सॉन्ग जा पर फनकार जो जिकरे नालो लिखो त असके सवलाई थी तां जो वरी मैसेज पतो वफा गुलाम रहीम थर पार कर झुड़बी खान तां लिखो है मोहम्मद खान जबरदस्त प्रोग्राम है मोहब्बतों शहर खिपरे मोरी खान यूसुफ चांग साहब।

घुड़सर मुझे नाला पोचन पे उनके प्रोग्राम में शामिल कंदा लूं विलेज सुमरो खान लाशारी का मैसेज पतो है अली नवाज ए गुलाम अहमद शाह तासा गद नवाज गुलाम अहमद ए शाह नवाज ए शहजाद ए गुलाम यासीन ए गुलाम मुर्तजा लाशारी तालिक अस्सलाम वालेकुम प्यारा भाव वालेकुम सलाम साईं असन तमाम प्यारा प्यारा बुधंदर इन विलेज सुमरो खान लाशारी का ता जो मैसेज पतो अली नवाज ए गुलाम अहमद शाह नवाज ए शहजाद ए गुलाम यासीन ए गुलाम मुर्तजा लाशारी मिठा मानू वड़ी मेहरबानी ता प्रोग्राम में शामिल थे आयो पंजी मौजूदगी जो एहसास दिनो है ता रस रिहान में शामिल थे आयो मैसेज पोतला है लिखला मिठा मानू अस्सलाम वालेकुम गोठ जपियो का मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो साहब एंड वफा गुलाम रहीम बलोच रोशन अली पाड़ो साहब मोहब्बतों मिठा मानू ताजा खोड़ सारा मैसेज पोता है सच जो अज ढी खुशी थी मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो साहब वड़ी मेहरबानी वफा गुलाम रहीम बलोच रोशन अली पाड़ो साहब लख मोहब्बतों सजन सांगी जीवान मां असा गुलाब गुल जो मैसेज पोतो है अवां जो प्रोग्राम जबरदस्त मिठी थर पार कर का सजन सांगी जी वांड मां असांखे हमेशा मोहब्बत में याद कंदा आहिनि गुलाब गुल ॾाढो सुहिणो नालो आहे गुलाब गुल गुलाब गुल वॾी महिरबानी तव्हांजी मिठा माण्हू शहर किपरे मोरी खां यूसुफ चांग साहब जो वरी मैसेज पहुतो आहे वॾी महिरबानी तव्हांजी लख थोरा सजन सांगी जी वांड मां गुलाब गुल अव्हांजो मैसेज पहुतो

बरकत अली ॾाढो ख़ूबसूरत फन जे हवाले सां ऐं तमामु बहितरीन कलाकार आहे। कौसर बुरड़े साहब जो ई गीत ॾाढो मशहूरु थियो, तूं मुंहिंजो सनम ऐं मां तुंहिंजो सनम आहियां।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

भली कार चवंदासीं रस रिहान प्रोग्राम आहे रस रिहान जा आख़िरी लम्हा आहिनि यकीन अलीपुर में असांखे ॿुधंदा आहिनि असांखे तमामु महबूब ॿुधंदड़ आहिनि ऐं महबूब समातुनि जा मालिक आहिनि जुम्मन अबड़ो भा जुम्मन अबड़ो साहिबु चए पियो त प्रोग्राम ॾाढो लाजवाबु आहे मोहम्मद ख़ान वॾी महिरबानी मिठा माण्हू तव्हां असांखे यादि कयो आहे मोहबत में जुम्मन अबड़ा भाउ

जी वफ़ा वफ़ा गुलाम रहीम तव्हां जूं मयारूं हमेशह हूंदियूं आहिनि त प्रोग्राम जो टाइम कीअं ख़तम थी वियो बिल्कुलु मिठा माण्हू तव्हां लिखियो मोहम्मद ख़ान ॿ कलाक अलाए कीअं गुज़री विया ख़बर कोन पई

तव्हां सभिनी प्यारनि जे नाम कंदासीं। यकीन जो की बज़म रसियान ॾाढो ख़ूबसूरत प्रोग्राम थियो ऐं तव्हांजो तव्हां तव्हांजा खोड़ सारा मैसेज आया।

वफ़ा गुलाम रहीम साहब तव्हां लिखियो था प्रोग्राम मां जेको ज़बरदस्त थी वियो हाणे गीत ज़बरदस्त वफ़ा गुलाम रहीम वफ़ा गुलाम रहीम लख मोहबतूं तव्हां सभिनी ॿुधंदड़नि जो ॾाढो सुहिणो सहकार रहियो साथ रहियो ऐं उन खां अलावा असांजा ख़ामोश साइलेंट जेके लिसनर आहिनि हुन जो बि मोहबतूं

मोहब्बती मंगल निज़ामनी साहब लखतोरा मोहम्मद और स्टैंडी जो आवास यकीन तां जे समातु जे नाम स्पेशली तां सबिन जे नाम अब्दुल रज़ाक दर साहब असां जे बुधदा आहिनि असां जा वहां बेली असां जा साथ

0: सबके दिल की।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: साईं जी एम सैयद बड़े मुतबर, उनका सियासी कद उस वक्त में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम लीग तब बनेगी जब जी एम सैयद मुस्लिम लीग बनेगा, उसमें आए। जो मुहरक था 1943 की करारदाद का, जो पाकिस्तान बनाने में जिसका सबसे बड़ा किरदार था, वो गदार बना। जिम्मेवार वो था या उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट।
3: सिंध से हमारे हिंदू भाई और मसीह भाई गए, मुझे आज वो बहुत याद आए कि काश अगर वो आज इस धरती पर मौजूद होते, मैं देखता कैसे लाहौर का एक बिजनेसमैन खड़े होकर इस मां धरती को तकसीम करने की बात करता है। वो सिंध का हिंदू, वो सिंध का मसीह आज इस मुसलमान के साथ मिलकर उसकी बुद्धि जब से खींचता उसकी जबान।
4: तो सिंध की जोग्राफिया हदूद है वो वही रहेंगी, बॉर्डर चेंज नहीं हो रहा।
5: यहाँ पर आप कितने सूबे बनाएंगे, 12, 10, 15? सर जो 4 हमारे सूबे हैं उसकी आवाम ने जो अपना वोट डाला था 2024 में, वो तो हक उनको मिला नहीं।
6: थरपारकर को सूबा बनना चाहिए। भाई मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, ना थरपारकर को होना चाहिए ना कराची को सूबा होना चाहिए। मैं तो इस बात से मुत्तफिक हूँ, एक गवर्नेंस का बेहतर निजाम होना चाहिए।
7: सिंध असेंबली में 9 सूबों ने इंतजामी यूनिट्स बाबत रिथ ते वेडी भी बहस। सैयद नासिर सिंह शाह चयो त सिंधड़ी ते सिर केर नरींदो सहंदो केर मयार, सिंध विराईंदे समझी विया हूंदा। अचो गॾिजी सिद्धू देश ऐं जिनापुर ख़िलाफ़ करारदाद मंज़ूर कयूं। जिते सूबा ठाहिण जी करारदाद मंज़ूर थी उते भली सूबा ठाहियो, पहिरीं उते तरक़ी थिए पोइ असांखे अची चवजो त तव्हां तरक़ी खां रहिजी विया। जमील सुमरो चयो त पहिरियां कराची खे वफ़ाक जो हिसो बणायो वियो ऐं पाकिस्तान ठाहींदड़ जी एम सैयद खे अवां गद्दार ठाहे छॾियो। सिंध रुगो हिकु नक्शो न पर धरती, तारीख़ी ऐं आइनी वहदत आहे। एम क्यू एम जे मेंबर इफ्तिखार आलम चयो त इंतज़ामी यूनिटनि जी बहस खे रुगो सियासी नारे तौर न पर इंतज़ामी सुधारनि तौर ॾिसणु घुर्जे। पीटीआई जे सजाद सुमरो चयो त ब अस्पताल संभाले न सघंदड़ वफ़ाक कराची खे पंहिंजे हवाले करण जी ॻाल्हि थो करे। इम्तियाज़ शेख चयो त पाणी ऐं ज़मीन सिंध लाइ रेड लाइन आहिनि, पाणी ऐं ज़मीन जी विच जी ॻाल्हि कई वई त भरपूर मज़ामत कई वेंदी। एम क्यू एम जे तहा अहमद चयो त पीपल्स पार्टी पंहिंजे मेयर खे बि इख़्तियार न पई ॾिए। आइन जे आर्टिकल 140A ते ॻाल्हाइण ग़लति नाहे। डॉक्टर सोहराब सखी चयो त जंहिं तरीक़े सां एम क्यू एम जे मेम्बरनि ॻाल्हि कई आहे, उन मां लॻे थो त हू सिंध जो विरागो नथा चाहिनि। टीपी जे एजाज़ सवाती चयो त हिन्दुस्तान लॾे वियल हिंदू ऐं ईसाई हिते हुजनि हा त सिंध विरहाइण जी ॻाल्हि कंदड़ वापारियुनि जी ज़बान छिके कढनि हा। सिंध हुकूमत पारां लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमनि ते गौर। वरे वज़ीर तरमीमनि जो जाइज़ो वठण लाइ सूबाई वज़ीरनि ते ॿधल कमेटी जोड़े छॾी। सीनियर वज़ीर शजील नामेमर, नासिर शाह, सईद ख़ानी, जालंजार, नजमी आलम ऐं सलीम बलोच कमेटी में शामिल। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबाई मालियाती एवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वास्ती कंसल्टेंट मुक़रर। इजलास खे मकानी कानून में तरमीमनि बाबति ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा इख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़े कयूं वेंदियूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मकानी इदारनि खे वधीक फ़ाल ऐं जवाबदेह बणायो वेंदो।
8: सिंध काबीना बलदियाती निज़ाम में जेको आहे रिफॉर्म्स करण जो फ़ैसिलो कयो आहे, छा मुशरफ़ तौरु वारो पुराणो निज़ाम बहाल पिया कयो छॾनि?
9: सूबाई असेंबली जो अख़्तियार आहे
8: मुशरफ़
9: कहिड़ा मन सुञाणा?
8: कंहिं जो प्रेशर आहे तव्हां ते, या इस्लामाबाद जो प्रेशर आहे, दिल्ली जो प्रेशर आहे, कंहिंजो प्रेशर आहे? निज़ाम अचानक एमरजेंसी में मीटिंग छो कॉल कई वई सिंध काबीना जी ऐं रिफॉर्म सां?
9: प्रेशर जेकॾहिं हुजे हा त असां हीअं न ॻाल्हायूं।
10: जेकॾहिं कंहिंखे लॻे थो त सिंध में डिवीजन्स घटि आहिनि, ज़िला घटि आहिनि, त हुन ॻाल्हि त थी सघे की न, ज़िला ठाहे सघनि था, डिवीजन्स वधाए सघनि था।
11: सिस्टम फेल थी वियो आहे जेको चवे थो त उनखे महिरबानी करे इस्तीफ़ा ॾियणु खपे, जन पूरे सिस्टम में पाण आहिनि।
12: बरोच पर सिंधी आहियूं, सिंध में रहूं था, सिंध सां मरंदासीं, सिंध सां जीअंदा।
13: हुनखे वधीक एम्पावर करणु खपे ताकी लोकल माण्हुनि जा मसला हल थियनि। सीएम साहब कमेटी ठाही आहे, सुठी ॻाल्हि आहे, ऐं मां सम्झां थो त उहो हिकिड़ो पॉज़िटिव कदम आहे। ऐं हीअ जेके मसला मसाइल हलनि था सूबे जे हवाले सां, पंहिंजे हवाले सां, उन्हनि जो हल बि हिते ई निकिरंदो।
14: मुशरफ वारो दौर बिल्कुल बहाल नथो थी सघे
15: त जेके चेयरमैन आहिनि या मेयर्स जेके आहिनि उहे कंटिन्यू कंदा जेसिताईं नई इलेक्शन थिए, उहो ज़रूरु थियो आहे। बाक़ी कुझु जेके अमेंडमेंट आहिनि उहे असेंबली में ईंदियूं, स्टैंडिंग कमेटी में वेंदियूं, स्टैंडिंग कमेटी जेके रिकमेंडेशन कंदी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
16: खुशखबरी अवांजे पंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अजा मुस्तफा सीएमएच हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियन जो इलाज, बार जो न थियण, बांझपन।
17: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रख निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
18: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
19: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
18: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
19: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
18: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
19: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
18: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
19: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
20: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
21: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
20: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
21: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
20: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअं में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
21: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230।
22: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
23: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
22: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
23: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
22: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
23: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
22: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
23: 03125252786।
22: जी हा, 03125252786।
23: GAFM रेडियो नेटवर्क,
22: सिंध जो आवाज़।

0: ਤੂੰ ਚਿੱਟ ਹੈ ਕੀ
1: ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ छा अड़ो को वाकई हुनर को जादू है जैसा असा रुगो खामोशी में कंहे दिल की गाल असा समझी सकूं जी दोस्तों अख अड़ी शे है जैके दिल जो आईनो पिण सद है जस्ट सपोज मैं उर्दू जो शेर अवे बुधाई करे पंजे प्रोग्राम जो पूरा पैटर्न बुधाईंदम कंहे दिल में कंहे लाइ छा लिखल है मोहब्बत है नफरत है या को क्यास है या कुछ का बी शे है उहा जानन लाइ असा जो का तो उनकी निगाह ना दिसदा हूं तो खामोशी से कहीं शख्स के दिसी करे असा अज्यूम कंदा हूं तो मानू भलो तो लगे या मानू बेकार तो लगे कावड़ थी नजर अचे या प्यार तो नजर अचे उन जो सजो जो को दारो मदार उन जे अखियन ते हुंदो आए कें शायर छा तो खूबसूरत इन मंजर के एकड़ो रूप डनो उन चो नजर ऊंची की तो दुआ बन गई असा निगाह मथे कंदाऊं जडे का सदा दींदाऊं जडे रब के बाडाईंदाऊं तो समझंदाऊं कोई आहे असा के जको बुधी रहयो आ असा जी खामोशी में भी असा के समझी रहयो आ शेयर कंप्लीट करे उनकी डेफिनेशन असा कॉलिंग नंबर भी बुधाईंदे गाल बोल भी थी प्रोग्राम जो प्रॉपरली असा पैटर्न भी बुधाईंदे नजर ऊंची की तो दुआ बन गई नजर नीचे की तो हया बन गई नजर तिरछी की तो अदा बन गई अगर नजर फेर ली तो कजा बन गई इन शेर जो मकसद ए मतलब अवां खां भी जानना चाहिंदुम ए माना चीज अवां के थोड़ो घणो डिस्क्राइब करण की कोशिश कंदुम लेकिन असा जो अजोको जो प्रोग्राम आयो टोटली डिपेंडेंट रुगो हन एकड़े शेर ते नाहे उन में खोड़ सारी शामिल आहे शायरी अवां जे दिल जो गालू शायरी वसीले गीतन जी झुंगार वसीले छाकाण तो अग में भी चयो तो शायरी अवां जे लफ्ज़न के खूबसूरत जो आदड़ो लिबास दई करे अवां जे महबूब ताई अवां जे प्यारे ताई पैगाम जी सूरत में पहुंचंदी आहे असा जॾहिं रब ॾे गुफ़्तगू करणु चाहींदा आहियूं ॻाल्हि ॿोल करणु चाहींदा आहियूं त निगाह मथे हली वेंदी आहे डायरेक्टली हूअं त रब दिल जे वेझो आहे बिल्कुलु तमामु हर हिक जे दिलि में रहंदो आहे वेझो आहे पर असां हिकिड़ो तसवुरु आहे त मथे ई सतह ॾे ॾिसंदा आहियूं उन खां पोइ जेकॾहिं हया जी ॻाल्हि कजे त उहो अखियूं झुकाए छॾंदा आहियूं तॾहिं शायर चयो त निगाह नीचे की तो हया बन गई ऐं वरी चए थो नज़र तिरछी की तो अदा बन गई मां हिते पंहिंजो एक्सप्रेशन अवां खे ॾेखारे कोन थो सघां अवां जॾहिं कंहिं शरारती ॿार खे या कंहिं प्यारे माण्हूअ खे कंहिं मर्द खे न चवां कंहिं छोकिरीअ खे छाकाणि त इहे अदाऊं सुहनि थियूं छोकिरियुनि खे सो उहे नाटी अंदाज़ में निगाहुनि खे हेॾां खां होॾे राइट एंड लेफ्ट फेराईंदियूं त उनखे चयो वेंदो आहे त नगर नज़र तिरछी की तो अदा बन गई वरी चए थो नज़र फेर ली तो कज़ा बन गई मगर जेकॾहिं मतिलबु उनजो मतिलबु आहे त जेकॾहिं कंहिंखां कंहिंजो प्यारो मुंहुं मटे छॾे चहिरो फेराए छॾे नज़रूं फेरे छॾे त उन जे लाइ त कज़ा थी वई कज़ा मतिलबु मौत अची वई

जिन दोस्तों असा के हिं ट्यून किया है उन्हें वंस अगेन वेलकम भलीकार खुशामदीद चाहूं था। प्रोग्राम दिल की गाल नव खां यारह वगे तई अवां सा गड हुंदो। असा अवां के पंजो कॉलिंग नंबर बुधायूं था। असा जो लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488। इन ते कॉल करे अवां पंजे दिल की गाल करे सको था। अजो को जो असा जो टॉपिक रहंदो अवां सा अवां जे दिल की गाल करण लाय बुधण लाय अवां जो तारुफ थींदो अवां सा गाल बोल भी थींदी। असा नंडी नंडी असा जी अवां खां फरमाइश हुंदी अवां जी फरमाइश भी प्रोग्राम में शामिल हुंदी। अजो को असा जो टॉपिक आहे त छा शायरी वसीले पंहिंजी दिल जी ॻाल्हि ॿिए ताईं पहुचाए सघिजे थी ऐं शायरी असांजो मुआशिरे ते कहिड़ो उनजो किरदारु आहे, शायरी कहिड़ो पंहिंजो अक्स छॾे थी, शायरी जी कंट्रीब्यूशन छा आहे असांजे मुआशिरे में। इन ते ॻाल्हि ॿोल थींदी, शायरी आहे छा, शायरी जो कंट्रीब्यूशन असांजे मुआशिरे में छा आहे, छा शायरी वधीक मां कोन थो चवां त छा शायरी उहो अवां ॿुधाईंदो त शायरी आहे छा ऐं शायरी जी कंट्रीब्यूशन असांजे मुआशिरे में आहे छा। असांजो अॼोको टॉपिक इहो आहे। बाक़ी हुन खां एंड में असांजो को न को हिकिड़ो मैसेज हूंदो अवां दोस्तनि जे लाइ मैसेज ऐं सुठा कोटेशन्स, उहे मैसेज वसीले बि असांखे अवां उमाणे सघो था। लाइव कॉलिंग ते बि असां सां गॾु फीडबैक ॾेई सघो था। लाइव कॉलिंग जो नंबर मां वंस अगेन रिपीट कंदो वञा 03000113488। इन ते कॉल करे अवां असां सां पंहिंजे दिल जी ॻाल्हि करे सघो था।

0: इन ट्रैक सां गॾु वेंदासीं हिकिड़े नंढड़े ब्रेक ते।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
4: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371-1800-3920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।
6: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
8: जी हा, 2315525786।
6: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: हिकड़ी असां कॉल रिसीव कंदासीं, कॉल खां पोइ असां ब्रेक ते वेंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ असां दोस्त जी फरमाइश पूरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम साईं, किथां खां?
1: वालेकुम सलाम।
0: प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि में वेलकम बलीगार, ख़ुशामदीद पहिरां। सखर मां केरु पिया ॻाल्हायो सुणा? साईंदाद ब्रोही। साईंदाद ब्रोही, प्रोग्राम कीअं पियो लॻे दिल जी ॻाल्हि? पक सां इहा दिलि था रखो असांजी?
1: न न साईं,
0: शुरू खां ॿुधो पिया जीअं ट्यून कयो आहे 9 वॻे खां। ॿुधो पिया त असां हिकिड़ो हिन जो टॉपिक बि रखियो आहे, उहो तव्हांखे यादि हुजे त रिपीट कयो। शायरी जो मुआशरे ते कहिड़ो असरु आहे, मुआशरे ते कहिड़ो किरदारु आहे, छा थी ॾिए असांखे? मूं त हिकिड़ो नज़म बि उहो पढ़ियो, मां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि कई, अवां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि कयो असां ताईं। पर फर्म फज़ीलत वारी शइ बि हुजे न। अॼुकल्ह मुआशरे में तव्हां ॿुधो रहिया आहियो त शायरी अहिड़ी बि त न हुजे जेका मुआशरे में बिगाड़ आणे। ऐं कुझु गीत तव्हांजी नज़रनि मां अहिड़ा बि गुज़रिया हूंदा जेके धमकियूं, धमान, दड़का, दाबान, पैगाम हुजे, शायरी को मैसेज हुजे। क्या बात है, लव यू। छा कंदा मुंहिंजा भाउ? कचियूं सिरां, उनखे पको न कंदा
1: आहियो?
0: पकियूं केरु कंदो आहे? पोइ तव्हां त कचियूं कंदा आहियो न। मुंहिंजा भाउ कचियुनि सिरनि खे तर कयो अथव कॾहिं? अच्छा, वरी बाहि में विझंदा। असांखे को हुकुम अवां जो, को पैगाम, को न्यापो? जी कयां जी, नंबर त तव्हांखे यादि आहे मुंहिंजे ॿुधाइण खां बि अॻु में। बिल्कुलु लॻी वेंदो दिलि सां, जेकॾहिं यादि कंदो त थोरो घणो इंतज़ार बि कंदो ऐं इन बहाने सां प्रोग्राम बि ॿुधंदा रहंदो। प्रोग्राम ॿुधंदा रहो, ब्रेक ते वेंदासीं, ब्रेक खां पोइ जेको आहे हिकिड़ो ख़ूबसूरत ट्रैक प्ले कंदासीं। वॾी महिरबानी प्यारा, लव यू, लक लाइक।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301043842।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल सागर आओ आया आबिद चौहान आओ बुधी रहे आओ GAFM 88 नेटवर्क प्यार जो कैसा पेच मां पाए बैठो आ प्यार जो कैसा पेच मां पाए बैठो आ पत्थर जे बुत खां आस लगाए बैठो आ प्यार जो कैसा पेच मां पाए बैठो आ पत्थर जे बुत खां आस लगाए बैठो आ पूछा जाने वायदा कसमू रीतू रस्मू पूछा जाने वायदा कसमू रीतू रस्मू मां जी खातर पान भुलाए बैठो आ प्यार जो कैसा पेच मां पाए बैठो आ प्रोग्राम में मुझो आए अवां जो साथ रहंदो 11 बजे ताईं हिक बो कॉल असां अवां जो अटेंड कयूं अवां के पंहिंजो कॉलिंग नंबर ॿुधाईंदासीं पर ॿुधाइण खां अॻ में कॉल अची रही आहे कॉल मिस थी वई अॻियां अची रही आहे अचण जो सिलसिलो हलंदो रहंदो अवां सां ॻाल्हियूं दिलि जूं थींदियूं रहंदियूं कॉलर आहिनि असां सां गॾु मौजूदु अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां पर किथां खां केरु
1: जी सर मां मोहम्मद आसर खासकिल खे ॻाल्हायां थो सुभाणे खासकिल शहर जोही खां
0: जोही खां वाह वाह क्या बात आहे जोही जेको आहे त असांजे मशहूर शायर जेको आहे त कंबराणीअ जो आहे शहर उन जो ज़िक्र थियल आहे जोही दादू आंदे सफ़ा पहिरें प्यादे असां माण्हू सिंध दे सफ़ा सिधे सादे क्या बात आहे वेलकम भलीकार ख़ुश आमदीद प्रोग्राम में प्रोग्राम कीअं पियो लॻे पहिरां
1: जी प्रोग्राम तमामु बहितरीन